तन सुन्न हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, समस्यावां नाल संबंध टुट जाता है, टुट जाता है। शायद आपनों पता होवे, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी और भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे विच प्रभु दे नाम नो शराब नाल तशबीह देंदे ने। नशा, एक नशा। जन्म साखी दियां ये पंक्तियां ते जगत प्रसिद्ध ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये शराब बनती किवें है, भगत कबीर जी ने तो डंग भी दस दिता है, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ पाओ भाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा, औधो मेरा मन मतवारा उन मन चढ़ा मदन रस चाखिया त्रिभुवन भया उजारा। पर मैं जो कुछ आपके सामने इस वक्त विचार रखने हैं उस तो किधरे ओले ना हो जावा, लेकिन इतनी गल स्पष्ट है मनुख नु नशा चाहिए चाहिए। एक नशा जो मनुख नु मन तो थल्ले ले जाता है, एक नशा जो मनुख नु मन तो ऊपर ले जाता है, मन थल्ले रह जाता है। एक नशा जो मनुख दियां चिंतावां ते दुखां नूं भुला देंदा है, एक नशा जो मनुख दियां चिंतावां ते दुखां नूं मिटा देंदा है, खत्म कर देंदा है। जिहड़ा नशा मन तो थल्ले ले जांदा है, ये शराब बाजार विच बिकदी है, पैसिआं नाल मिलदी है। जेड़ा नशा मनुख नु मन तो भी पार बहुत उपर ले जांदा है, ये बिकदी नहीं, स्वयं बनानी पैंदी है, आप बनानी पैंदी, आप बनानी पैंदी, आप पीनी पैंदी है, आप बनानी पैंदी है। इस वास्ते करीबन करीबन विद्वाना ने प्रभु दे नाम नु भी एक नशा आख्या है, पर बेहोशी दा नहीं होश दा नशा। एक नशा मनुख दे सारे होशो हवास नूं भुला देंदा है, सुला देंदा है। एक नशा मनुख नूं पूर्ण होश दे च लियांदा है, सारे होश जगा देंदा है। या ते मनुख नूं पूर्ण होश चाहिदा है या बेहोशी विचकार दी अवस्था दुखदाई है, विचकार जीवना कठिन है। इकबाल कहिंदे ने हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू, हक आपस च बैठ के किधरे सच दी गल करिए, हक दी गल करिए, ते उहदे बारे कोई तशबीह देनी पै जाए, हक कैसा हुंदा है, सच कैसा हुंदा है, सच की है। हर चंद हो मुशायद हक की गुफ्तगू, तुलनात्मक गल करनी होवे, खुदा दी तुलना देनी होवे, सच दी तुलना देनी होवे, हक दी तुलना देनी होवे। हर चंद हो मुशायद हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है सागरो मीना कहे बगैर। हक कैसा हुंदा है, खुदा कैसा हुंदा है, सच कैसा हुंदा है। इकबाल भी कहिंदा एक नशा, एक नशा, एक सरूर, एक मस्ती, एक नशा। पर पूर्ण होश दा नशा जो चिंतावां ते दुखां ते पापां नूं मिटा देंदा है, एक नशा बेहोशी दा नशा जो दुख संताप भुला देंदा है, चिंतावां भुला देंदा है, और वक्ती तौर ते भुलांदा है, बार बार पीनी पैंदी।
धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ इत्थे कह रहे ने, कल कल वाली ए युग कलाली है। कलाल है, इहदे कोल केड़ी शराब है? कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवनहार, पींदा मन है, शराब है कामना दी, काम दी। तुम कई यत हो जगत गुरु स्वामी, हम कई यत कल जुग के कामी। इशारन इशारा रविदास भी करते पेने, ये युग कामी युग है, प्रधान है कामनावा, प्रधान है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, कामनावा दे केंद्र तीन ने, अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित। इसनों फिर इस तरह कहते ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, केंद्र तीन ने वासना दे, कामना दे केंद्र तीन ने, अहंकार, लोभ, काम। वासना दा सुभाव की है, जो कोल है उन्हों नहीं देखती, जो नहीं है उन्हों देखती। कामना दी फितरत की है, जो कोल है उन्हों नहीं देखती, जो नहीं है कोल उन्हों देखती है। जो नहीं है वो भी हो जाए कोल, फिर कामना अग्गे चली जाती है, वासना अग्गे चली जाती है, जो हुण भी कोल नहीं है उन्हों देखण लग पैंदी। थोड़े विच जिहड़े अभ्यास करदे होणे ने, थोड़ा अपने नेड़े आंदे होणगे, जरूर पता चलदा। वासना दा अपना सुभाव है, जो कोल है उन्हों नहीं देखते, जो नहीं है उन्हों देखते। और इहदे केंद्र तीन ने, अहंकार, लोभ, काम। तो फिर इंज कहिंदे ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अहंकार वासना प्रभुता मंगदी है, लोभ वासना पदार्थ ही मंगदी है, काम वासना रूप मंगदी है। किड़ा रूप मंगदी है, किड़े पदार्थ मंगदी है, किड़ी प्रभुता मंगदी है, जो कोल नहीं है, नहीं है, जो है उनू वासना देखदी ही नहीं, देखदी नहीं। इस संबंध च एक होर नुक्ता सुन लो, जद मनुख जमीन नू वेखे इन झुके, आसमान नहीं वेख सकता। ते जद इंज आसमान नू वेखे तो फिर जमीन नहीं वेख सकता। एको ही समय च जमीन ते आसमान दोवें नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा। दूसरा उदाहरण, जद झुक के किसे दे पैरां नू वेखिए गौर नाल, उदा मुखड़ा नहीं वेख सकांगे। ते उदे मुखड़े नू देखिए सीधा तो फिर उदे चरण नहीं देख सकांगे। ऐना ही कर, एको ही समय एको ही नजर दे चोदे पैर भी दिखाई देन, उदा मुखड़ा भी दिखाई देवे नहीं। कुदरत ने तौफीक अखां नू दित्ती नहीं, नहीं दित्ती। या झुक के जमीन वेख ले, या सिर उच्चा करके आसमान वेख ले, या नजरां किसे दे पैरां ते टिका दे, या नजरां किसे दे मुखड़े ते टिका दे। तो तजर्बा करके वेख लेना, दोवें कट्ठे नहीं वेख सकोगे, मुखड़ा ते चरण, आसमान ते जमीन। जो जमीन नू वेखोगे आसमान नहीं दिखाई देगा। जितने चिर तक वासना पदार्थ दी चलदी है, उतने चिर तक परमात्मा भी एक वासना का विषय होगा। परमात्मा परमात्मा नहीं है, नहीं है। और हिरदे की शुद्धि भी नहीं होगी अगर वासना करके मैं पाठ कर रहा,
ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪਾਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਲੋਭ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਸ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਚੱਲਣ। ਕਾਮਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉੱਤੇ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਤੀਜੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਬੈਠ। ਸਤਸੰਗੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਿਆਲੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਜਪ ਕਰਾਂ, ਤਪ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ,

संत मर्यादा टकरा गई। हर संत की अपनी मर्यादा हो गई, पंथ की अपनी संत पंथ की मर्यादा नाल सहमत ना हो, कोई भी नहीं सहमत। यह भी मैं अर्ज करते हैं, अपनी अपनी मर्यादा। एक तो है ना अकाल तख्त की बिल्डिंग नू गिराना, दुष्टपना ये जाबराना कम। एक है अकाल तख्त की मर्यादा नू भंग करना, उनू गिराना। यह दो तरह की गिरावट आती है। एक होंदा है अकाल तख्त के आकार नू गिराना, एक होंदा है अकाल तख्त के विचार नू गिराना। अगर वो घातक ने, दुष्ट ने, जो अकाल तख्त के आकार नू मिटाना चाहते ने, तो वह कौन हो गए जो विचार नू मिटाना चाहते ने? पर हुण कौन सोचे? सोच विचार वाली गल नहीं रही, सोच विचार का सिलसिला नहीं रही। कौमी दर्द के नाते मैं थां थां ते एक निक्की जी आवाज थोड़े सामने रख देना, पंथ पंथ की मर्यादा नाल ही जिंदा रहेगा, वरना नहीं रह सकेगा। क्योंकि संत के कम से कम हजारा ने, फिर ते हजारा तरह की मर्यादा हो जाएगी, कौम फेरू फेरू हो जाएगी। चाहिदा ते ऐसा सी संत पंथ नाल सहमत आउंदा, अज दा संत पंथ नाल सहमत ना होया, कोई भी सहमत नहीं। कोई भी संत पंथ की मर्यादा नाल सहमत नहीं है, और कोई भी संत अपने स्थान नूं गुरुद्वारा कहला के राजी नहीं। ये आश्रम है, ये डेरा है, ये ठाठ है, ये गुरुद्वारा नहीं है। मैं छोटी जी जबान नाल वड्डी गल पे करदा, और ये तमाम नाम ऐसे ने अपने इजाद किए हुए ने, वरना पुराना नाम तो यही सी गुरुद्वारा। गुरुद्वारियां दा नाम गुरुद्वारा मिटा के होर नाम भी धार्मिक सतला नूं दिते गए, और इस तरह दसण की कोशिश की गई कि साडा अपना स्थान इत्थे साडी मर्यादा चलेगी, पंथ की नहीं, गुरु की नहीं। विचार करके गुरु सन गुरु ग्रंथ जी, और आकार करके गुरु सी गुरु पंथ। ते जे पंथ दी मर्यादा नहीं मननी, तो एक गल स्पष्ट हो गई, गुरु दे आकार तो इनकारी होए। ते अज गुरु दे आकार तो इनकारी, कल विचार तो भी इनकारी, देर की लगनी है। कोई आकार नू मिटांदा है, कोई विचार नू मिटांदा है। खैर ए ते में विचार जो है गल आ गई, घाटे च रहे हां असी इस ढंग दा तौर तरीका बना के। जदों मैं अखीर मई दे महीने च विदेश दी यात्रा लई देश तों रवाना होया सी, बाबा हरबंस सिंह जी दिल्ली च मैनूं मिले, गुरुद्वारा सीसगंज साहब दी सेवा करा रहे ने, दास नाल काफी प्यार करदे ने। मैनूं कहण लगे बहुत वड्डा खून खराबा होया सी जब 2% महंत भ्रष्ट होए सन, ते असी उन्हां कोल गुरुद्वारे लै, खून खराबा होया, बहुत शहीदियां पा गए, बहुत मारे गए। मैनू कहण लगे हुण उन्हां तो हजारां गुणा वध खून खराबा होएगा, तां इन्हां पॉलिटिशियन लोगां कोल गुरुद्वारे आजाद होणगे, वरना नहीं। वह इतनी ताकत विच नहीं सन महंत, फिर भी खून खराबा होया। इन्हां कोल ते बड़ी ताकत है, सब दे मिनिस्टरां नाल संबंध ने, सब पक्के राजनीतिक ने देश दे, इस तरीके नाल जो है देखा गया है। और करीबन करीबन तमाम पॉलिटिशियन 6वें महीने 7वें महीने किधरे गुरुद्वारे आ गए, ते आगे गुरुद्वारे नाल कोई मतलब नहीं है। गुरुद्वारे नूं ते एक पौड़ी बनाया होया है पार्लियामेंट तक पहुंचने वास्ते, असेंबली हाल तक पहुंचने वास्ते, मिनिस्टर की कुर्सी ते पहुंचने वास्ते। काम तो इन्हों का यह सी कि मनुखता नूं गुरु तक पहुंचाओ, पर करदे की पैने गुरु के आसरे ते किवें पार्लीमेंट तक पहुंचीए, किवें मिनिस्टर बनीए। तो इस तरह असी घाटे च जा रहे हैं धार्मिक तौर ते, और जो घाटा महसूस होया है, मैं थां थां ते इस नूं रखिया, घाटे च हां असी, वादे च नहीं हां, धार्मिक तौर ते घाटे च जा रहे हैं। इन्हां 50 साल च ते बहुत घाटे चले गए हैं, थोड़ा जिहा 50 साल पिछे चले जाइए, हर पिंड विच ब्रह्मज्ञानी मौजूद सी, हर शहर विच ब्रह्मज्ञानी मौजूद।

सन्मानयो गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार आप विचार सरवण कर रहे हो शाम दे दीवान विच, इतनी लंबी ते लड़ी ये नहीं करनी सी पर हो गई। जप जाप ये बुनियादी मूल बाणियां। अज भाई हरचरण सिंह जी विचार कर रहे सन कि बहुत सारे ऐसे सज्जन ने जिन्हां नूं जाप साहब कंठ नहीं पढ़ नहीं सकदे। इन्हां दे च एक विशेषता है, ये वाजे जोड़ी नाल जाप साहब पढ़ा के करीबन करीबन कईयां नूं कंठ करा देंदे ने, शुद्ध करा देंदे ने। शायद ये 8 या 9 तरीक तो अगले वीक थोड़े सामने इस तरह रात में करिया करेंगे। ये दास दे बहुत पुराने साथी ने, गालबन सन 58-59 तो बहुत पुराने साथियों दे चों गुरमुख सज्जन ने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, जप मूल है, जपते ही सारी गुरमत खड़ी है, जपते ही सारी सिखी खड़ी है। जप कढ़ दो ते सिख सिख नहीं है। गुरु दी मत सारी जप दी व्याख्या है, जप दी प्रेरणा है। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, यही जप जाप बन जांदा है। निर्माणता दी मूर्ति सजदे अनंत रूपा नु सजदा। ये जप जाप जद बनदा है तो यही जाप बैराग बन जांदा है। जप जो रसना द्वारा है, जाप जो प्राणा द्वारा है, बैराग ये पुरुष हुण संसार तो उखड़ गया है। रहिंदा जगत विच पिया है पर जगत तो उखड़ गया है। रहिंदा परिवार विच पिया है पर परिवार तो उखड़ गया है। इस तरह जैसे एक दलील दास ने दिती सी, पक्का नारियल हौल दे अंदर ही अजे गिरी लेकिन संबंध तोड़ बैठी है ते हौल दे अंदर, पर हुण हौल नाल कोई रिश्ता नहीं रहा। जद कच्ची सी ती हौल नाल चंबड़ी हुई सी, हुण नहीं। बैराग जैसे पकदा है, मनुख इस संसार दे खोल नूं, शरीर दे खोल नूं, परिवार दे खोल नूं छोड़दा है। रहिंदा परिवार दे च है लेकिन निरले, रहिंदा संसार दे च है निरले, रहिंदी आत्मा इस शरीर दे च है निरले। इस तरह दा पुरुष करीबन करीबन हर वक्त उदास होवेगा। जगत दे समझ आ जाएगी उसनों ऐसा कुछ भी नहीं जिस दे मैं जी सका, बैराग। और इसे ही उदास बिरती देते सन्यास खड़ा है। जैसे कल दास ने अर्ज की थी, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। जो मन तो उदास हो जाए वो सन्यासी हो जाता है। उदास मनुख है 3-4 कारना करके हो सकता है। ज्ञान करके, कथा कीर्तन सुने ते कथा कीर्तन चोट कर गई, उदास हो गए, समझ आ गई। दूसरा तार्किक है, कथा कीर्तन ने ते चोट नहीं की थी, पर सोचदा बहुत ज्यादा है, विचारदा बहुत ज्यादा है, और उसदे अपने विचार इतने प्रबल, इतनी सोचनी प्रबल हो गई कि संसार तुच्छ महसूस होंदा है। बड़े बड़े अजीम चिंतक दार्शनिक फिलोसफर उदास ही रहिंदे ने। और मैं अर्ज करा, जितने ओ बेचैन ते उदास रहिंदे ने इतना होर कोई भी नहीं। जितने ओ ज्यादा सोचदे ने उतना संसार आसार प्रतीत होंदा है। इतनी गलत स्पष्ट है कि सन्यास ते उदास बिरती दा चोली दामन दा साथ है। जो इस जीवन तो उदास नहीं, वो परम जीवन दी तलाश नहीं करेगा।
ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨੇ ਗਾਲਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ, ਅਜੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਦਾਨ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

और उड़ीक बेच घर दी चौखट ते ही बैठ गई। हुणे गालिब आएगा, दोपहर हो गई नहीं आया, दोपहर ढल गई नहीं आया, शाम पै गई नहीं आया। दुखत होई, मायूस होई बेगम। ज्यों सूरज टलिया थोड़ा जिहा हल्का हनेरा पैण लगा, लड़खड़ांदा होया गालिब आंदा होया दिखाई दिता है। दस खचरां दे उत्ते शराब दियां बोतलां लदियां हुई। इस तरह ही करदा हुंदा सी, फिर दिन रात पींदा रहिंदा सी। घर दे खचरां बूहे ते आ गईयां, शराब दियां लदियां हुईयां, आप भी लड़खड़ांदा होया जारो जार फुट के रो पई बेगम। और ए बेगम ने आख्या, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी कि अद्धी माया दे देंगा, कि तुसी सारे दी शराब ले आए और मैं महीना किस तरह लगाऊंगी। तुसी खुदा दी कसम चुकी सी। गालिब कहिंदा है, उसे खुदा ने मेरी कसम तोड़ दित्ती। किस तरह? कहिंदा जद मैनू 84 रुपए मिले ना, मैं बिल्कुल घर दी तरफ आ रहा सी कि 84 दे 84 तैनू देने सन, पर करा की, रस्ते च खुदा दा घर पै गया, मस्जिद पै गई। मौलवी वाज दे रहा सी, असी कहने कथा करनी हो कहने वाज दे, मौलवी वाज दे रहा सी। तो मैं सोचिया चलो खुदा दी गल भी अज सुन ली है। की कहिंदा मौलवी सारे स्रोतियां नू नमाजियां नू मुतासर होके कह रहा सी, सारियां नू मुखातब करके, कि रोजी दहिन खुदा है, एदी चिंता नहीं करनी चाहिदी। राजक रहिंद खुदा है, एदी फिक्र नहीं करनी चाहिदी। कहिंदे बेगम जद मैं ए सुनिया, रोजी दहिंद राजक रहिंद खुदा है, तो मैं ते फिर शराबखाने ही चला गया, सारी शराब खरीद के ले आया। रिजक दी चिंता खुदा करेगा, शराब दी चिंता मैं आप कर ली, क्योंकि खुदा ने करनी ही नहीं सी। और जारो जार गालिब भी रो पिया, कहने लगा इतनी उदासी च मैं नहीं जी सकता, तुम बहुत मजबूर करेंगे, मैं खुदकशी कर लवांगा, मैं नहीं जी सकता, उदासी दा इतना बोझ मैं नहीं चुक सका। इतना क्यों उदास? बहुत सोचे है, बहुत सोचे है। और जितना सोचने वाला मनुख होवेगा, जो जितना दिमागी तल ते जीण वाला मनुख होवेगा, संसार नाल तालमेल नहीं बैठेगा, उदास हो जाएगा। कहिंदे पशु उदास नहीं आउंदे, सोचदे ही नहीं। बच्चे उदास नहीं आउंदे, इतनी सोच समझ नहीं आउंदा को। मूड बंदे उदास नहीं आउंदे, दिमाग दे तल ते नहीं जींदे। जितनी सियाणप दी मिकदार जिस कोल जितनी ज्यादा होवेगी, उतना ही उदास होवेगा, लाजमी है। उदासी बिरती सियाणेपण दी पहचान भी है, पर इस उदासी दा गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। चलो इस नूं भुलाओ, शराब पी के इस उदास बिरती नूं भुलाओ। कुछ ऐसे भी ने कि उस उदासी दी हालत विच इतने निराश हो जांदे ने, आत्महत्या करन दी भी सोच लैंदे ने, खुदकशी। दूर क्यों जाओ, हकीम मोमन खान मोमन जैसा सियाणा बंदा भी कहिंदा है, मैं भी सोचिया सी मरण दा, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहिंदा सोचिया सी मैं खुदकशी कर लवां, मर जावां, इतनी उदासी च की जीवना, इतनी निराशा च की जीवना। पर एकदम ख्याल आ गया, जे मर के भी मैनू सुकून ना मिलिया, यही उदासी पल्ले पई, तो फिर मैं की करांगा। इस वास्ते इरादा बदले है,
तो मैं अर्ज करना उदास बंदा तीन कारना करके आंदा है, या तो कथा कीर्तन चोट कर जाए, बाणी का पाठ करता पे शब्द ने चोट कर दी है, उदास हो जाएगा लाजमी, या खुद बहुता जहीन होवे ते हर वक्त सोचण दे तल ते रवे उदास हो जाएगा, या कोई संसार तो चोट लग जाए, बहुत गहरी चोट लग जाए, कोई अजीज मित्र अकारब चलाना कर गया, दिवालिया हो गया, बहुत वड्डा नुकसान हो गया, बेपति हो गई है, बेस्ती हो गई है, उदास हो गया, निराश हो गया, ये तीन मूल कारण ने मनुख दे उदास होण दे, या ते शब्द चोट कर जाए, या कोई संसार तो चोट लगे, या खुद दी सोचनी बड़ी प्रबल होवे और हर वक्त दिमागी तल ते जीवे, तो उदास बंदा करीबन करीबन इस ढंग नाल जीवेगा नहीं, या ते जिंदगी नू बदलेगा, या जिंदगी नू मिटावेगा, या जिंदगी नू भुलावेगा। भुलाण दा तरीका है शराब, मिटाण दा तरीका है खुदकशी, और बदलन दा तरीका है जप ते जाप। इन्हां तिन्हां दे चों कोई इक ते उसनू अपनाना ही पएगा, जप जाप या शराब या आत्महत्या, एक तरीका ते अपनाना ही पएगा। और मैं अर्ज कर दिया औखे ना होना, इन्हां तिन्हां दे चों जिसने एक नू भी नहीं चुनिया, गुस्ताखी माफ, ना शराब नो, ना खुदकशी नो, ना जप जाप नो, ये अजे मूड है, दिमागी तलते नहीं जी रहे, इतनी मैं अर्ज कर, अजे सोच विचार वाली गल कोई नहीं है, अजे दार्शनिक नहीं है, चिंतक नहीं है, अजे इसकी सोचनी कोई बहुत गहरी नहीं है, ना जीवन बारे ना संसार बारे। जैसे संसार बारे गालिब ने सोचा, जैसे इस जिंदगी बारे गालिब ने सोचा, कहने लगे ये धौकड़ी की तरह हर वक्त श्वास ले जाने और कढ़ी जाने, क्या यही जिंदगी है, तो मैं नहीं जीवना चाहता, उदास हो गया। खुद नू खत्म भी ना कर सकिया, खुद नू बदल भी ना सकिया, खुद नू भुलाण की कोशिश कर लग पिया, पी गए। ये सदी बहुत सियाणी सदी है, ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी तेजी नाल ज्ञान चले है, कदम कदम ते स्कूल कॉलेज, और जितनी सियाण बद गई उतनी उदासी बन जो है बद गई, और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई, उतनी लोकी पानी दी तरह पीण लगता है, लोकी बेहोश होना चाहते, अकल तो थल्ले जीवना चाहते, ना सोचिए, क्योंकि सोचदे हां ते बेचैन, सोचदे हां ते दुख, सोचदे हां ते तकलीफ। उदास होण दे ए तीन कारण ने, या ते दिमागी तल ते जीवे बहुत सियाणा होए, या उसनू कथा कीर्तन चोट कर गई है, या संसार तो कोई चोट लग गई है, परिवार तो कोई चोट लग गई है, उदास हो जाएगा। लेकिन एक खतरा है, जड़ी संसार तो चोट लगे है, लाजमी नहीं है यह जिंदगी नू बदलन की कोशिश करे, बल्कि अक्सर मौका तो यह आंदा है जिंदगी नू खत्म करन की सोचदा है। सारी दुनिया च लोकी सुसाइड करदे ने, आत्महत्या होंदी है, और संपन्न अमीर देशां ज्यादा है बनिस्पत गरीब देशां दे, क्योंकि गरीब इतना उदास ते निराश नहीं आउंदा, वो कल दी आसा बनाई रखता है, चलो अज मेरे कोल कुछ नहीं ते कल हो जाएगा, ये जिहड़ी कल दी आसा है उन्हू निराश नहीं होने देती। जिस मनुख की जिंदगी च कल रहा ही नहीं, जो कुछ चाहिए अज प्राप्त है तो उहदे नाल तृप्ति नहीं हुई, उहदे नाल सुकून नहीं मिलिया, तो उदास ते हो जाएगा। तो हुण ये किस तरह जीवे, किवें जीवे, ये तो खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, सारी दुनिया च है, या ते कोई संसार तो चोट लग गई है, या अपनी सोचनी बड़ी प्रबल है, या सतगुरु दे शब्द ने चोट कर दिती है, परमात्मा दे नाम ने चोट कर दिती है।
ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ

सन्मान योग गुरु रूप साध संग जीओ फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने अनंत रूप ने और हर पहलू दी अपनी अपनी विचार है। धर्म दी दुनिया विच कर्म दी बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इसनू ही गुरबाणी दी रोशनी विच पढ़न दी समझण दी सोचण दी विचारण दी कोशिश करदे हां। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती। कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसके फैसले नू उसके इरादे नू ना मोड़िया जा सकता है ना तोड़िया जा सकता है। इस वास्ते कहिंदे ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है, वो आप सच है, उसका न्याय सच है। एक गल वखरी है कि दुनिया विच जिथे इंसाफ मिले सारे अरब विच ईरान अफगानिस्तान ते भारत विच उसनू अदालत कहिंदे ने। अदालत अदल कहिंदे ने इंसाफ नू, अदालत इंसाफ दा घर अखरी अर्थ ये बनते हैं। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे, अदालत जिथे अदल होवे, जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे ते शायद मेरी इतनी जानकारी ना होवे, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं ते इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है ते इंसाफ खो लो।

आनंद लेंदे। पशु सुखी ने, महापुरुष ते देवते आनंद दे च ने, मनुख दुख दे च है। दुख सिर्फ थानू मनुख दी दुनिया दे च मिलेगा या उना पशुआं कोल दुख मिलेगा जिहड़े विचारे मनुख दी कैद दे च ने, मनुख दी संगत दे च रहिंदे पए, उना दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा दिता है। जिस ढंग नाल ओ जीवना चाहते ने उस ढंग नाल मनुख नहीं जीण देंदा पिया, ओ दुखी हो सकते ने, ओ पीड़ित हो सकते ने। वरना दुख सिर्फ मनुख दे कोल है, कायनात दे च, इस ब्रह्मंड दे च दुख होर किधरे भी नहीं है। बनस्पति खेड़े च है, पशु सुख दे च ने, कीड़े मकोड़े भी सुख दे च ने, यह भी मैं अर्ज कर दिया। एक बिष्टा दा जंतु भी सुख दे च है, एक गंदगी दे च लिपटिया होया सूअर भी सुख दे च है। मैं फिर अर्ज करा, एक मनुख दुख दे च है, एक मनुख दी संगत दे जिहड़े पशु रह रहे ने मनुख दी कैद दे च, वो विचारे दुखी हो सकदे न, वरना पशु दुखी नहीं ने, पंछी दुखी नहीं ने। पशु जी रहे ने लोड़ां दे तल दी पूर्ति ते, लोड़ां पूरियां हो गईयां सुखी। मनुख लोड़ां दे नाल नाल जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते, लोड़ां पूरियां ना होवन पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां पूरियां ना होवन मनुख बेचैन होंदा है, मनुख तड़पदा है। ते ख्वाहिशां दा एक होर बड़ा भयंकर नियम है, एक ख्वाहिश पूरी होवे ना ते पूरी होंदिया होंदिया वो दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। जैसे एक मनुख जमीन तो रुखसत होंदिया होया वड्डा हो गया, जवान हो गया, व्याया गया, बुढ़ा हो गया, जमीन तो रुखसत होंदिया होंदिया दो चार पांच सत बच्चियां नूं जन्म दे जांदा है, पिछे अपनी संतत छोड़ जांदा है, अपना खून छोड़ जांदा है। जमीन तो रुखसत होंदिया होंदिया मनुख दो चार बच्चे छोड़ जांदा है, एक ख्वाहिश पूरी होंदिया होंदिया, एक ख्वाहिश मरदिया मरदिया पांच दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। हुण पूरी एक होई है ते दस होर पैदा होई हैं, फिर उन्हां च पूरी एक होई है ते फिर दस भी होर पैदा हो गई ने, तो रोज रोज ते ख्वाहिशां वधदियां जाणगियां, ख्वाहिशां दी भीड़। इस तरह जिवें मौत दर घट जाए ते जन्म दर वध जाए तो मनुखां दी भीड़ हो जांदी है। ख्वाहिश पूरी ते कोई कोई आउंदी है, ये भी मैं अर्ज कर दिया, होंदी ओ भी कर्म अनुसार है, उंज नहीं। कुछ संतां महापुरुखां दे डेरे इस वास्ते चल पैंदे ने, जे सौ बंदे गए ने ते सठ दा ते उंजी कर्म बनन वाला आउंदा है, उंजी गल सिरे चढ़न वाली आउंदी। वो जिहड़ी सठ बंदियां दी गल सिरे चढ़ जांदी है ना, वह कहिंदे ने इस डेरे करके संत करके साडी गल बणी है, वह फिर सठ कम से कम होर सठां नूं ले आउंदे ने। उन्हां दे चों भी कुछ एक दी गल ते उंजी बनन वाली हुंदी, जे डेरे ना भी जांदे तां भी बननी सी, इह भी मर्ज करदे आ। जे ना भी तीर्थां ते जांदे तां भी बननी सी। बस पखंड इस तरह दुनिया दे च वधदा है अग्ञान दे आसरे ते। एक ख्वाहिश पूरी होंदिया होंदिया दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है, तो इस तरह ख्वाहिशां दी भीड़ वधदी जांदी है, वधदी जांदी है। पशु लोड़ां दे तल ते जींदे ने, मनुख ख्वाहिशां दे तल ते जीवदे ने। लोड़ां दी पूर्ति ना होवे ते पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होवे मनुख तड़पदा है। और सारियां ख्वाहिशां किस दियां पूरियां होईयां कता ही नहीं, एक दिन मनुख ही पूरा हो जांदा है, खत्म हो जांदा है। ख्वाहिशां कितनियां पूरियां होंदियां ने, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। अली कहिंदा एक एक श्वास दे अंतिम समय कितनियां ख्वाहिशां निकलदियां जिहड़ियां अंदर पईयां सन, जगह मल के बैठिया सन, भई अज साडी गल बनेगी, अज साडी गल बनेगी, गल की बननी, विश्वास ही निकल गया है। हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, दुख केवल मनुख की दुनिया च है। ऋषिकेश दे अज तो कोई गालबन 25-26 साल पुरानी गल होगी, रामकली राग का शब्द चल रहा है, सहन सरदान दे इंद्र रोआया, परस राम रोवे घर आया। जब जी साहब तो लेके उथे रागमाला तक संपूर्ण कथा होंदी है, और उथे एक नियम है 5 साल भोग पाते ने लाजमी, ताकि विद्यार्थियों ज्ञान मिलता रहे।

राम सुचानंद भी बैठा है, नवाब मलेर कोटला भी बैठा है, आले दुआले दे होर नवाब के जागीरदार भी बैठे ने। कुल मिला के 17 बंदे ने जिन्होंने फैसला करना है इन्हां मासूम बच्चियां बारे, और फैसले ते मोर लानी है नवाब सूबा सरहंद वजीद खान, मुखी हो है। पर इस मुखी दे मुंह बच्चियां नू वेखदे ही बोल निकल गए, मासूम हस्ते ते छोटे ने, बहुत मासूम। दीवान सुचानंद कहिंदा ही फरजंदे मार हस्ता, ये मासूम नहीं, ये सब दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ही फरजंदे मार हस्ता, मार कहिंदे ने सप नू, परशियन विच, अरबी विच, पश्तो विच सप नू कहिंदे ने मार। ई फरजंदे मार, फरजंद कहिंदे ने बच्चे नू, ये सप दे बच्चे ने। ये वड्डे होके डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल देना चाहिए। मार ई फरजंदे मार, ये बोल दीवान सुचानंद वकत पाके कलगीधर दे कन्ना तक भी पहुंचे सन। मेरे बच्चियां नू शहीद करन तो पहले मार आख्या गया है, सप आख्या गया है, ई फरजंदे मार। जफरनामा जिहड़ा लिखिया है उहदे सतगुरु ने कबूल भी किया है, ठीक है असी मार ही हैं, असी सब पी हैं, पर जालम लई, दुष्ट लई, सतगुरु दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। चाह शुद्ध के चू बच गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेची दा मार। की होया, तू मेरे चार बच्चे मार दिते, औरंगजेब पेची दा सप मौजूद है, पता नहीं इस तरह के कितने बच्चियां नू जन्म देवेगा, सप ते मौजूद है। की होया, तू चार बच्चे मार दिते, चार सप दे बच्चे मार दिते, सप मौजूद है। चाहा शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेची दा मार। पेचीदा सप जो बच गया कौन, ये हुण तुसी खुद अंदाजा लगाओ सतगुर किस नू कह रहे हैं, अपने आप नू कह रहे हैं, अपनी उम्मत खालसे नू कह रहे हैं, कि बाकी बमांदस्त पेची दा मार, ऐ औरंगजेब सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार दिते। चाह शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार, ये श्री मुखवाक पातशाही दसवें जफरनामा। जफरनामे दे अर्थ ने जित दियां चिट्ठियां। चाह शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेची दा मार। चे मर्दी के अखगर खमोशा को नहीं, के आतिश दा मारा फिरोजा को नहीं। ये कोई मर्दानगी ते नहीं, अकलमंदी ते नहीं, कि तू चार चिंगारियां बुझा देवे ते शोलियां नू भड़का दे, भड़क गए ने शोले, तेरिया चार चिंगारियां बुझाण देना। ते चीदा सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार दिते। कि सतगुरु ऐसा कहिंदे ने, सप नू संस्कृत दे च भुजंग कहिंदे ने, परशियन दे च मार कहिंदे ने, भुजंग सप। और गजब दी गल, जिस दिन सतगुरु ने कबूल कर लिया सी भुजंग जालम लई, दुष्ट लई, और कबूल उदों कीता जब दीवान सुचानंद दी जबान तो निकलिया ई फरजंदे मार हस्त, ये सब दे बच्चे ने। और फिर ते जिधर किधरे कोई सिख आ रहे होवे जा रहे होवे, पता मुगल की कहिंदे सन, कि मार मी रफ्ती, कि मार मी आमद, ये सब जा रहे है, ये सब आ रहे, कोई सिख नहीं कहिंदा सी, मनुख भी नहीं कहिंदा सी, कि मार मी रफ्ती, कि मार मी आमद, ये सब आ रहे, ये सब जा रहे। हालात ऐसे हो गए सी। साहबा ने क्या कबूल है, दुष्ट लई, जालम लई, जाबर लई असी जहर हां, मजलूम लई असी अमृत हां। और अज भी सिख अपने बच्चे बच्चियां दे जद नाम रखांदे ने, तो ग्रंथी सिंह अज अरदास करदे ने, ए सतगुरु सच्चे पातशाह आपने जो भुजंगी दी दात बख्शी है, तो भुजंगी नू नाम बख्शो, भुजंगी तो मुराद की सब दे बच्चे नू नाम बख्शो, भुजंगण नू नाम बख्शो, सप दी बच्ची नू नाम बख्शो, भुजंग सप, भुजंगी सप दा बच्चा। ये कबूल हो गया सी, ये शब्द कबूल हो गया, परवान है। दुष्ट लई सपां, मजलूम लई अमृत।

अनंत कला दा मालक है, बहु पक्की जात परमात्मा ते मार नहीं है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रथम जड़ी पहली गल कीती है, ओते है ए पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेण का, तो आओ हमारे पास। ए बंदे पहले तू मौत नू कबूल कर ले, अपना अंत कबूल कर, ताई मैं तेनू बेअंत दे देश ले जा सकांगा। पहला अंत तेनू कबूल होवे, प्रथम मौत तेनू कबूल होवे, एक नजरिया सामने रख के फिर साहब कहंदे ने कि परमात्मा निरा काल दा रूप ही नहीं, निरा मौत दा रूप ही नहीं, बल्कि उते बहुत वड्डा दाता है, बड़ा दयालु है, और उसने बहुत कुछ दिता है। की कुछ दिता है? मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, ये सब कुछ तेरी देन है, तू साड़ी झोली दे च पाई है, तू ते बहुत वड्डा दाता है, बहुत वड्डा दाता है। पर साहिबां दा ऐसा कहना है कि दात दे च बंदा फस ना जाए, किधरे दाता दे च फस के दाते नू भुल ना जाए, वली नियामत बिरादरा दरबार मिलख खाना है, धन संपदा नू वेख के, धियां पुत्रा नू वेख के, महल माड़ियां नू वेख के, किधरे दाते नू भुल ना जाए, तो उसनू अपनी मौत चेते रखनी चाहिए। पर मौत नू चेते रख के किधरे इतना ही उपराम ना हो जाए कि संसार तो बिल्कुल किनारा कश हो जाए, तो साहब कहिंदे नहीं, अपनी अकल दा भी प्रयोग करे, अपनी बुद्धि दा प्रयोग करे, बुद्धि दे आसरे विच संसार विच रहिंदा होया संसार तो उच्चा होवे। इस वास्ते गुरु नानक ने नारा लाया, अकली साहिब सेविए अकली पाईए मान, जिंदगी दे हर पहलू विच तू अकल दा प्रयोग कर, पर निरी कोरी अकल दा प्रयोग ना कर। ऐसा ना होवे कि अकल बारीक हुई जाती है, रूह तारीक हुई जाती है। कई दफा मनुख फिलसफे दियां गुंजलदार गल्लां विच ऐसा फसदा है कि जिंदगी दी हकीकत नालों संबंध टुट जांदा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने ए तिन्ने ही गल्लां कठियां ही तैनू चेते होण, तू ज्ञानी बन, बुद्धिमान बन, आलम बन, लेकिन इलम विच खो ना जावे, तैनू मौत चेते होवे। पर मौत चेते होवे किधरे तू इतना उपराम ना हो जावे कि संसार तो किनारा कशी कर लवे, परमात्मा तैनू एक दाते दे रूप विच दिखाई देवे, और जो कुछ तेरे कोल है ए उसकी दित्ती हुई तेनू निशानी प्रतीत होवे, इस निशानी नू वेख के तू दाते दा चिंतन कर सके। गुरु नानक देव जी महाराज दा कथन है कि इस तरह दियां कथनियां संसार देच बहुत सारियां ने, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। अनंत रूप ते अनंत गुणां दा मालिक साधकां दी दृष्टि च जिस जिस ढंग नाल प्रगट होया, साधक लोगां ने उसे उसे ढंग नाल उस परम शक्ति दे गीत गाए, उदी उस्तति कीती। चूंकि वह हर पल हर छिन नवा है और अनेकां रूप ने, इस वास्ते परिपूर्ण परमात्मा दे अनेकां नाम पै गए। साहिब फरमान करदे ने, बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। किसे नू ऐसा दिखाई दिता कि ओ रमिया होया, जद ऐसा दिखाई दिता तो रसना तो निकलिया राम। जद ऐसा किसे नू प्रतीत होया कि संसार दे च रहिंदा होया ओ संसार तो परे है, तो निरंजन शब्द रसना ते आ गए। जद ए देखिया कि उस दे च खिची नहीं, कशिश नहीं है, उस दे च संसार दी पकड़ उस दे च नहीं है, संसार दे च रहिंदा होया संसार दी मोह ममता उस दे च नहीं, ता सुभाविक शब्द निकलिया कृष्ण। जद ऐसा दिसिया कि उते करता है कृत नहीं है, तो रसना दे चो निकलिया करतार। जद ऐसा प्रतीत होया उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उते एक परम शक्ति है, तो रसना दे चो सुभाविक नाम निकलिया निरंकार। ते जद ऐसा महसूस होया कि वह एक आश्चर्य रूप है, ते जिहड़ा उस दे नेड़े जांदा है उसका अंधकार दूर होके उसनू प्रकाश मिलता है, उसनू चानना मिलता है, तां सुभाविक शब्द निकलिया वाहे गुरु। इसे तरीके नाल बोली दे आधार ते, मजहबां दे आधार ते, वख वख बनी हुई संस्कृति दे आधार ते
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।

मित्र ना आवे जिनू बंदा राज दी गल दस सके, क्योंकि कुछ ऐसे भी राज होंदे ने व्यक्तिगत जो बंदा मां नू नहीं दस सकदा, प्यो नू नहीं दस सकदा, भरा नू भी नहीं कह सकदा, वह सिर्फ मित्र नू ही कह सकदा है, दोस्त नू कह सकदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा नू दोस्त भी कहंदे ने, क्योंकि जिहड़ी गल मेरे अंदर गुझी है हे अकाल पुरख मैं तेरे अगों प्रगट करनी है, इस ढंग नाल जैसे कि एक मित्र मित्र दे अगों करदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च मित्रता दा रिश्ता भी मौजूद है। साहिब कहंदे ने सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती यार, तिस मोहन लाल प्यारे के हौ फिरो खोजंती। साहिब उस परम शक्ति नू यार कहंदे ने, तू सखा है साडा, तू मित्र है साडा, तू यार है साडा, असी तैथों कोई गल छुपा के नहीं रखनी और छुपा के रख भी नहीं सकते, तेरे अगों सब कुछ प्रगट कर देना है। पर तू निरा यार नहीं, तू ते भ्राता भी है, जैसे रण में सखा बरात तू साड़ी बावा है, निरी तू साड़ियां बावा ही नहीं रक्षा करने वास्ते, बल्कि तू पिता है, ते पिता दी सोचनी यही आउंदी है बच्चा अजीम बने, तू सानू महान बनाने दी भी सोचदा है। तू निरा पिता नहीं, तू मां भी है, ममता तैथों डुल डुल के पैंदी है, तेरा प्यार समग्र जीवन दे उत्ते बरसदा है, तू सारिया नाल प्यार पाना। अगाहों चलिए साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी महबूब ते महबूबा दे रिश्ते नूं भी झुटलांदी नहीं, नजरअंदाज नहीं करदी। गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा संबंध भी परमात्मा दे नाल जोड़िया, वडहंस राग दा एक शब्द मैं आप जी दे समक्ष भेट करा। मोरी रुण झुण लाया भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया, तेरे दर्शन विटों खनिए मन्या तेरे नाम विटों कुर्बानो, जा तू ता मैं मान किया है तुद बिन कहा मेरा मानो, चूड़ा भन पलंग से मुंदे सनबाई सनबाहा, एते वेश करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा, ना मनियार ना चूड़िया ना से वंगणिया, जो शह कंठ न लगिया जलन से बाहड़िया। इस शब्द जिस रिश्ते का जिक्र है ओते ओही संबंध मेरे पातशाह स्थापन कर रहे ने जो सूफिया ने ईश्वर दे नाल स्थापन किया। दरअसल मां बाप होवन, भरा भी होवे, दोस्त भी होवन, पति ना होवे पत्नी ना होवे तो एक बहुत वड्डी घाट परिवार विच महसूस होंदी है। यह रिश्ता भी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सतगुरु देव जी महाराज ने जोड़े। फिर गुरबाणी उस परम शक्ति नू गुरु भी कहंदी है, गुरु गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर, तू गुरु है आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, तू साडा गुरु है, असी तैथों प्रेरणा लैण वाले, तू समग्र जीवन नू ज्ञान दान देण वाला है, सारे जगत नू चानना देण वाला है। जिथे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस दे नाल गुरु ते शिष्य दा रिश्ता जोड़दे ने, उत्थे गुरबाणी उसनू राजा भी कहंदी है, को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। ए परिपूर्ण परमात्मा तेरे समान कोई होर राजा नहीं है, तेरे समान कोई होर पिता नहीं है, तेरे समान कोई होर मां नहीं है, तेरे समान कोई होर मित्र दोस्त नहीं हो सकता, तेरे समान कोई होर महान मालिक नहीं हो सकता। सारी जगत दे रिश्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे च निरूपण कीते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि जिन्ने साडे संबंध ने इन्हां संबंधां दे विचों ही परमात्मा की झलक वेखनी है, मां दे अंदर दुल रही ममता नूं परमात्मा की दित्ती हुई ममता समझना है, पिता का दिता होया प्यार ऐसा समझना है कि परमात्मा ही यह प्यार दे रहा है, ईश्वर ही यह प्यार दे रहा है। मां नूं ठुकरा के पिता का दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर्थां ते भ्रमण करे दान करे पुन करे, भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस नूं कोई महानता नहीं दिती। आप कहंदे ने मां प्यो पर हर सुने वेद भेद न जाने कथा कहानी, मां प्यो पर हर करे तीर्थ अठसठ तीर्थ घूमण वाणी।

पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिंदगी दा लक्ष्य अगर असी लभीए आम दुनियावी मनुख दा आम संसारिक इंसान दा लक्ष्य की है मनुख क्यों जी रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनियावी मनुख दे लक्ष्य दा इस पावन पवित्र वाक विच बड़ा सुंदर चित्रण कीता है तस्वीर कशी कीती है। आप फरमान कर देने दुनियावी मनुख संसारिक मनुख आम इंसान आद आदमी खान ले जी रहे है पीण ले जी रहे है पहनन ले जी रहे है मनोरंजन ले जी रहे है परिवार ले जी रहे है परिवारिक खुशियां ले जी रहे है और फिर जी रहे है सोण ले नींद। जीवन दा आखिर लक्ष्य की है इस तो बिना होर कुछ लभना भी नहीं। खाना पीना पहनन जिंदगी दे चों कढ दई है। मनोरंजन दा सारा समान एक पासे कर दई है। परिवारिक खुशियां नूं बलाए ताकते रख दई है ते नींद नूं भी एक पासे कर दई है। शायद मनुख अज ही खुदकशी कर लवे आत्महत्या दी सोचे फिर मैं जीवां ही क्यों किस लई जीवां। जीवना आम दुनियावी मनुखता बस इसे लई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जिंदगी विच इना तमाम वस्तुआं दी प्रधानता नहीं सी ना खाण दी ना पीण दी ना पहनण दी। परिवारक कशिश भी नहीं सी घरों निकले बारह बारह साल दी उदासी जंगल

0: ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਜਿਸ਼ ਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਚ ਪੀੜਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਤਰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਹਾਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਤਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਵੈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਸੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਫੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੀ ਗਈ, ਆਖਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਭੇ ਹੋਇਆ। ਸੱਭੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ, ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਭਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੱਭੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਜੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਗਰ ਵਿਆਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਅਹਿੰਸਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੋਚਣੀ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਗਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਬੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੜਪਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਬੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਛਲਦੇ ਨੇ, ਤੜਪਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੜ ਤਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे। जिस आहार ने दूजिया नो चोट पहुंचाई है, ए आहार इस नु भी चोट पहुंचाएगा, एदे तन नु रोगी करेगा, एदे मन नु पीड़ित करेगा। करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नु चोट पहुंचा के हासिल कीती जा रही है, तो चोट पहुंचा के हासिल कीती गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी, खुराक भी जरब करेगी। इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार, हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाने, सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार, तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता, जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता, और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उनु सभ्य नहीं कहा जा सकता, असभ्य मनुख है। अजे उसनु सवाद बैठने दी जांच नहीं आई, अजे उस दे अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई, तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करदे ने, फिर दूसरा आप पहनने दा उपदेश देंदे ने।
1: रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान, नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम, बाबा होर पैनन खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार।
0: खान पीन तो बाद पहनन दी मनुख सोचदा है, और ये सिर्फ मनुख ही सोचदा है, या इंज कह लो पहनन तो ही मनुखता आरंभ होंदी है, पहनन बारे पशुआ ने नहीं सोचे, पंछिया ने नहीं सोचे। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने, विस्माद नांगे फिरे जंत, इन्ना नंगे पशुआ नू देख के मैं ते विस्मादमयी हो जांदा, विस्मय हो जांदा, इना दे अंदर पहनन दा ख्याल नहीं पैदा होया, ये इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने। एक मासूम बच्चा नवजायद बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनन दा भाव नहीं पैदा होया, ए गल वखरी कि चीथड़िया विच कपड़िया विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने, पर पहनन दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया। इस वास्ते कह देंदे ने, ए मासूम बच्चा अजे असभ्य है। सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है, तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया, ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने। मनुखता नहीं आरंभ हो सकी, मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है, और पशु सोच दे तो लाजमी वो पहनण लई भी सोच दे, और नगनता उन्हां नूं महसूस होंदी, या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ होंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे। यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना आवे, साडी भारतीय परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने, ये मनुख बहुत नंगा है, बिल्कुल नंगा है। नंगे तो मुराद अजे इस दे अंदर ते पहनण दा ख्याल भी नहीं, इस ख्याल दे नाल ही मनुखता दा जन्म है, वरना खाण पीण दा ख्याल ते पशुआं दे अंदर भी है, ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं अगर मनुख दे अंदर है। मनुखता आरंभ होई पहनना है, ढकना है, कुछ आजा ढकने ने, मैज इसलिए ढकड़े ने कि मनुख दा शील संजम दे च रवे, मनुख दियां वाशनावां शील संजम दे च रहन, मनुख दे मानसिक वेग मर्यादा दे जहन, नगनता उतेजना पैदा कर सकती है, नगनता भड़काऊ हो सकती है। यही कारण है भड़के हुए मनुख नु, और जिसने अपनी वासना उजागर कर रखी हुए आले दुआले कह दिता जाता है नगन है, नगन है। पहनना तो इस वास्ते सी कि नगनता नु ढकना है, ते नगनता नु इस वास्ते ढकना है कि भड़किया हुई वासनावां नु जो है ढकना है, मनोबिरतियां नु ढकना है। लेकिन कपड़िया दे राही वासना नु उजागर करन दा ख्याल पैदा हो जाए, कपड़े ही वासना दी प्रदर्शनी करन लग पैन, तो एक कपड़िया दा गलत इस्तेमाल है। जैसे खाना पीना ते इस वास्ते सी कि शरीर दी भुख मिटे ते तंदुरुस्ती मिले, पर खाना पीना ही रोगी कर देवे, विकारी कर देवे, तो ए मकसद दा हल ना होया। ए खाने तो जो लक्ष्य दी पूर्ति होनी सी भुख मिटे ते शरीरक तवानाई दी प्राप्ति होवे, भुख जरूर मिटी है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं मिली, बीमारी मिली, मानसिक विकार मिले ने, खाने दा लक्ष्य पूरा नहीं होया। पहनन दा तो लक्ष्य ए सी वासना ना भड़के, और दूजियां दियां वासनावां भी सीमा विच रहन, नगनता प्रगट ना होवे, खास करके विपरीत नगनता तो बिल्कुल प्रगट नहीं होनी चाहिए, मनजर आम ते नहीं होनी चाहिए। पर कपड़िया दे चों नगनता प्रगट होवे, कपड़े ही वासना दी प्रदर्शनी करन, ऐसा हो सकता है। अगर कुछ खाना पीना रोग पैदा कर सकता है, जबकि खाना पीना रोग लई नहीं है, तो कुछ पहनना भी विकार पैदा कर सकता है, जबकि पहनना विकारा लई नहीं है। इस वास्ते इस पैरे देवी मुख पंक्ति देच गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। सियाने ओ पहनना जो तन विच खुआरी पैदा करे, मन विच विकार पैदा करे। इस संबंध विच इंज कह लो, जब देच ए पहले ही विचारक ने गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां ने सोच रहा है कि कुछ पहनना भी विकारा नु जन्म देंदा है, कुछ पहनना भी खुआरी नु जन्म देंदा है, पैगंबरी पुरुषां दे चों, अवतारी पुरुषां दे चों, चोटी दे सिरमौर संतां दे चों, ये पहला उपदेशक है जो पहनन वाले भी कहिंदा संजम चाहिदा है। जिथे खान पीण बारे संजम चाहिदा है, सोच चाहिदी है, मर्यादा चाहिदी है, उथे पहनन बारे भी आपने शिक्षा दिती है। कुछ ऐसा पहनना जो शरीरक रोगां नू जन्म दे सकदा है, कुछ ऐसा पहनना जो मन विच विकारां नू जो है जन्म दे सकदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, अगर इस तरह दियां मनोबिरतियां आवन तो मनुख ऐसे सादे कपड़े पहनेगा, ओ लिबास नहीं जो दूजियां दी वासनावां विच उतेजना पैदा करन ते अपने मन नूं भड़कान। पहनना ते इस वास्ते सी कि मैं ढकिया जावां, ते जे पहनना इस वास्ते होवे कि मैं प्रदर्शित होवां, मैं प्रगट होवां, मैं दिसां, तो ए ते इस तरह है जिमें किसे औषधि तो बीमारी लब्बण दी कोशिश कीती जावे, किसे दवाई तो रोग लब्बण दी कोशिश कीती जावे। पहनना सी अपने आप नूं ढकण लई, लेकिन अजोके युग दे च पहनना हो गया है अपने आप नूं प्रगट करन लई। बहुते मनुख अज कपड़ियां दे राही अपने आप नूं प्रगट करदे ने, बाकी तो उन्हां कोल कुछ है नहीं, पहनना ही पहनना है। पहरावा दसदा है, कपड़ा ढकण लई सी। इस्लाम ने ऐसा पर्दा दे दिता, ऐसा ढकया, मनुख गायब हो गया, पर्दा ही पर्दा रह गया, कपड़ा ही कपड़ा रह गया, मनुख ना दिसया। ईसाइयत ने इतनी नगनता दे दिती, इतनी नगनता दे दिती, तो नगनता ही नगनता रह गई, कपड़ा ओले हो गया। दरमियाना दरमियाना ढंग, दरमियानी अवस्था धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चुनी, वो कपड़ा ही नहीं कि मनुख नु बिल्कुल ढक देवे, कपड़ा ही दिखाई देवे, मनुख ना दिखाई देवे। पर ओ नगनता भी नहीं कि नगनता दिखाई देवे

संदेह ही संदेह रह जाए, विश्वास रहे ही ना, ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है, ऐसा ही मनुख जालिम हो जाता है, ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है, ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है, ऐसा मनुख महान जालिम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा दे प्रति संदेह ही संदेह है। और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है, भगवंत का रूप हो जाता है, भरोसा ही भरोसा है, संदेह तो है ही नहीं, केवल भरोसा है। ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन आउंदा है, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया है, अठे पैर समाधमई आउंदा है, समाधि लीन आउंदा है, अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया आउंदा है, निर्मलता दी खाण आउंदा है। ओ निर्मलता दी मूर्ति कबीर दे चेले कबीर दे अगों फरियाद करदे ने, साडे अंदर संदेह पैदा हो गया, की करिए, इस पनहारी नु वेख के और सिकंदर लोदी दी बेगम नु वेख के, इन्ने कीमती कपड़े, इतना कीमती लिबास, पता नहीं उसकी जबान चो कदी परमात्मा दा नाम निकलिया भी है कि नहीं। तो कबीर दे बड़े दो कीमती श्लोक ने इस संबंधित, कबीर दे श्लोकां दी बाणी, आप कहने कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार तासो पटंतर ना पुजे, हर जन की पनेहार। जो हरी जन दी पनहारी है, सारा दिन हरी दे जना नु पानी पिलांदी है, सेवा कर दी है, इस दे कपड़े इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे कपड़े इस कपड़ियां दे सामने तुच्छ ने। तासो पटंतर ना पुजे, हरजन की पनहार। तर्क खड़ी हो गई, भगत जी वो कपड़े मखमली ने, नीलम जड़त ने, जर्री दा कम होया उना ते, ए कपड़े खद्दड़ देने, लीना लीना ने, टाकिया ने, थां थां तो पाटे हुए ने, सिले हुए ने, इते चीथड़े ने, इना नु आप कहंदे हो इतने महान ने, उस बादशाह दी बेगम दे जिहड़े बस्तर ने बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसका बड़ा सुंदर जो है जवाब दें देना है। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, मैं हरी दी चेरी नु मान क्यों दे दिता, मैं इना चीथड़िया दी इतनी उपमा क्यों कर दिती, मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन क्यों कर दिती, और इतना कीमती लिबास, जर्री नीलम दा कम जिस दे च, मैं उसनु भंडिया क्यों, मैं उस दे निंदा क्यों की थी। दूजिया दे तर्क अजे जबान ते नहीं आए, लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने, समझा रहे ने, कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे विखे को, ए सिमरे हरि नाम। इदे सादे कपड़िया दे हरी दा नाम है, उदे भड़कीले लिबास दे प्रदर्शनी है, वाशना दी नुमाइश है, उदे कपड़िया नू देख के दूजिया दियां वाशनावां भटक दियां ने, भड़क दियां ने, प्रगट होंदियां ने। इदे सादे लिबास नू वेख के लोगां दी जबान ते सतनाम, सतनाम दा जप चलदा है। जिन्हां कपड़िया नू देख के भगवान चेते आवे, मैं उसकी उपमा करा, या जिन्हां कपड़िया नू देख के शैतान दा जो है चेता चले, मैं उदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हू वेखदे आई शैतानियत प्रगट होंदी है, शैतान दे दर्शन होंदे ने, और है ऐसा लिबास जिन्हू वेखदे आई भगवान दे दर्शन होंदे ने, प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खान पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं, धर्म दी चरम सीमा नू छू नहीं सकेगा, बुलंदियां नू छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो, जद भी किसे दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने, उहदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जांदी है,
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ

0: वास्तविक ये रिश्ता जो द रिश्ता है अंदरूनी रिश्ता है और परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग का जो है बना रखे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां महान रिश्तियां दा जिक्र बड़े सोहने आलमाना ढंग नाल उजागर करदे ने। घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरा बड़ा सुंदर घर भी है, बड़ी सुंदर महल माड़ी भी है, और उस घर दे च उस महल माड़िया दे अंदर मेरा बहुत सुंदर एक परिवार भी है। मैं फिर अर्ज करा, मनुख नूं सिर्फ खाना ही नहीं चाहिदा, सिर्फ पीना ही नहीं, सिर्फ पहनना ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मनुख नूं घर भी चाहिदा। और सिर्फ घर नहीं, परिवार भी चाहिदा। अगर परिवार नहीं तो घर ही नहीं। घर दे च ओ भी चाहिदी है जिसनूं कहा जाए घर वाली। घर दे च ओ भी चाहिदा है जिसनूं कहा जा सके घर वाला। घर वाला ही नहीं है, घर वाली ही नहीं है तो घर कादा? घर की है, कोई ईटां दी ढेरी नूं घर थोड़ी कहंदे ने, कोई पत्थरां दे इकट्ठ नूं घर थोड़ी कहंदे ने। नहीं, घर है तो इस दी शोभा है घर वाले नाल, घर वाली नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, ए जो तेरी मेरे ते निगाह हो गई है, ए जो तू मेरे ते अपनियां निगाहां सुट दित्तियां ने, ए जो मैं तेरी निगाह दे थल्ले आ गया, ए मैनू सुंदर महल दी प्राप्ति हो गई है, परिवार दी प्राप्ति हो गई है, घर दी प्राप्ति हो गई है। हुक्म सोई तुद भाव सी, होर आखण बहुत अपार। दरअसल मनुख दे प्राणा दे च ए भी प्यास है कि मैं घर दे च जो कुछ आखा मेरी गल ठुकराई ना जाए, मेरा बोल काबले कबूल हो, मां नू पिता नू पत्नी नू पुत्रा नू भरावां नू भैणा नू कम से कम मेरी गल रद्द ना कीती जाए। साहिब कहिंदे हुक्म सोई तुद भाव सी, होर आखण बहुत अपार। ऐही मेरा हुक्म करना है, केड़ा? जिड़ा तेरे हुक्म नू पा जाना है, जिड़ा तेरी रजा दा मैनू चंगा लगना है। जो तेरा हुक्म मैनू चंगा लगन लग पे है, मानो यही मेरा हुक्म पे चलदा है, यही मेरी गल पे चलदी है, मेरी गल कोई रद्द नहीं करदा। दरअसल एक बहुत वड्डी सच्चाई अध्यात्मक दुनिया विच प्रगट होंदी है उस दिन, जेड़ा मनुख परमात्मा दा हुक्म मनदा है जगत उसका हुक्म मनदा है, और जो परमात्मा दे हुक्म नूं एक पासे कर देंदा है उस मनुख दे हुक्म नूं भी दुनिया बहुत चिर तक मन नहीं सकदी, ओनू भी नजरअंदाज कर दिता जांदा है, उसनू भी एक पासे सुट जांदा दिता जांदा है। जो उस एक दा हुक्म मन लैंदा है उसका हुक्म सारी कायनात ते चलदा है। तो हुक्म सोई तुद भाव सी, और आखण बहुत अपार। और ते बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, पर हे परिपूर्ण परमात्मा, वास्तविक तेरी रजा दे च राजी रहना, तेरे हुक्म नूं जो है चंगा समझ के ओनू अपने अंदर धार लेना, तेनू पा जाना, बस यही अपनी गल दा चलाना है, यही जो है असी अपना हुक्म चलांदे आ। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। ओ परिपूर्ण परमात्मा सच्चा है, मालिक है, पातशाह है, ओ किसे कुल पुछ पुछ के बख्शिशा नहीं देंदा, देई जांदा है, देई जांदा है। किसे खेत कुल बदल पुछदे नहीं बरसीए के ना बरसीए, किसे घर कोल सूरज पुछदा नहीं रोशनी देईए के ना देईए, किसे घर दे कोल चंद्रमा पुछदा नहीं मैं अपनियां किरणां खिलेरां के ना खिलेरां, और किसे मनुख कोल पवन पुछदी नहीं तेनू छूआ के ना छूआ। महाराज कहिंदे इस तरह परमात्मा पुछदा नहीं, बिना पुछिया ही सब कुछ देई जांदा है, बिना पुछिया ही सब कुछ वंडी जांदा है, बिना पुछिया ही सारियां नियामतां झोली दे जो है पाई जांदा है। आखरी रहाओ, चौथा रहाओ, बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है मन में चले विकार। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक इथे सौण दे अर्थ ने ऐशो इशरत, परिवारिक ऐशो इशरत, परिवारिक सुख साधन, परिवार दा सारा सुख दा माहौल। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए मन में चले विकार। ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ, ਹੋਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਗ ਵਿਚ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਰਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਉਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ।
1: ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨ ਅਤੋਲੇ।

जैसे धन वधदा है धर्म घटदा है, जैसे बाहर दे सुख वधदे ने अंदरूनी सुखा नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़दा है। मसंदा ने भी ऐसा ही कीता। धन दे घर विच अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा चार कुंटां च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ये लालसा जागी अपने सिख बनाई है, अपने सिख बनाई है, अपनी सिखी दा वादा करिए। लिहाजा कार भेट जो मिलती सी गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेट नूं भी ये पूरे दा पूरा खुद अपने कोल रखण लग पए, गुरु तक नहीं पहुंचांदे सन। इन्हां विच कुछ कने थे गुरु होण दे दावे भी कर दिते, सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोभ दे मारे होए वासना विच ग्रसे गए, और वासना दे ग्रसे होए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंच गए, ए मसन जुलम ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नूं धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता। आख्या नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका हाजमा कमजोर होवे और पूजा प्रतिष्ठा नूं हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नूं हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा ते लैंदा है, लेकिन धन दी सही वरतों, धन दी हिफाजत और धन दा विस्तार, धन दी वरतों किसे किसे नूं जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जद मसन चोटी दे धनाड हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नूं ये प्रथा खत्म करनी पई। चरणामृत दी थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ए प्रचलित आपने कीता, और ए अधिकार एक नो नहीं पंजा नो दिता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। केड़े पंज? जो गुरु नो प्यारे ने ते जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार है, रोम रोम विच गुरु दा प्यार है। ऐसे पंज जो गुरु नूं प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे अंदर है, वह वारी वारी पंज बाणियां पढ़न। जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपाई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नूं बाटे वे दे जो पानी है उस दे च रखन, ताकि हिरदे नूं जोड़ के पड़ी होई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी विच प्रवेश करन, ताकि वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे विच लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच वासना है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच प्रबल हंकार है, अखां राही प्रगट होंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट होंदा है, और उस सख नूं अगर एक टेक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जांदा है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करदे ने। ए प्रथा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विचे खंडा नाल फेरी जाना, खंडा शक्ति दा प्रतीक है, जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया। खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज उत्पत्ति दा खेल दा चाय बनाया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे बोल, ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया, शक्ति तो होया। खंडा शक्ति दा प्रतीक।

उसे तो वाणी आई है, उसे तो संसार आया है, उसे तो अमृत आया है। इस तरह वाणी दे राही पाणी रिच शक्ति दा प्रवेश, परमात्मा दा प्रवेश, उस दे रस दा प्रवेश। पंज प्यारे फिर अगां चल के इसनू छकांदे ने जो अबलाशी ने, जिन्हां दे अंदर अमृत दी तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनू स्कूल दी यूनिफॉर्म पहननी पैंदी है, दाखला लेना पैंदा है, एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है, दाखला फीस भी देना पैंदा है। शुरुआत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी, सिर दे विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन नो। ये सीस हे गुरुदेव जिस दिन थोड़े चरणा ते रखिया सी असी उस दिन दा ही समझ लिया सी थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है। इस तों बाद जद पंज प्यारियां ने ये प्रथा चलाई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हुक्म दे मुताबक, तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु दा है, तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु दा है। इस वास्ते जब सीस गुरु दा है तो सीस गुरु वर्गा होवे, इस दे सोचनी परमात्मा दी, इहदा स्वरूप गुरु वर्गा। इस तरह गुरु घर दे चरणामृत दी थां ते खंडे बाटे दी अमृत दी जो है प्रथा चली और ये धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई। लेकिन जदों आपने प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाहिए कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकनगे, अमृत छका सकनगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चियां नूं पढ़ाउण लई खुद पढ़दा है, पहले खुद पहाड़े पढ़दा है, नाल बच्चियां नूं पढ़ाई जांदा है, फिर ऐसा है बच्चियां नूं कहिंदा है हुण तुसी सुनाओ मैं सुनना है। पहले आप वक्ता हुंदा है, बच्चे श्रोता हुंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनदे ने, उस्ताद श्रोता बनदा है। ये देखण लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया, छकाया पहले अमृतमयी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत, और इस तरह पंज प्यारे तैयार की थे। फिर देखना चाहिया वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कार्य मैं चाहना इसनु ये कर सकनगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ, तुसी मैनू सीस भेट कीता सी, मैं सरबंस भेट करांगा, मैं सब कुछ भेट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को मेरे घर विच मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जद पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी मंग बड़े सुंदर बोल ने सर्वलोक ग्रंथ दे, सतगुर इना पंजा कोल अमृत दी दात मंगदे ने। पंजा नू साफ कहंदे ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचो में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इना पंजा विच मेरी झलक है, ये पंजा दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, इना विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इना पंजा को अमृत दी दात मंगदे ने, अब अमृत छकाओ जैसे तुम लेने। जिस तरह ये अमृत लेने ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया, इस तरह मैं थोड़े कोलों
प्राप्त करना है। और वाकई जद पन्ना ने छकाया सतगुरु प्रसन्न होए, हां तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नु प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे छे ओही अमृत छका सकदे ने और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते ने, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकदे हां उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत दी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब

धनगुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना। दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समय, ये मानसिक रहत है। तन दुते पं ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे दिख। रहत नामे इस तरह के बोलने, ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होय होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे, बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है, अगां फरमान कर देने। तिम कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रखोता है। सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान है,

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजो ने सैभं गुरु प्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलों विच अपने शब्दों विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की यह सिरजना की है इस विच रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां हुई शाखा अपना शिंगार बदल रही ने उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने ये शाखा दरख्तां दियां। हो बहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया हुआ है। मौसमी बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। किधरे पीले रंग का किधरे गुलाबी रंग का किधरे चिट्टे रंग का इतने सुंदर श्रृंगारमई वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसमी बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है। मन की हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है। सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देती है गर्म कपड़िया एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनू समा कहिंदे ने वक्त कहिंदे ने इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आदि काल तो संत जनां दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदे सौ गया है

तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जांदी है, अखां खुल जांदियां। एक गल वखरी है, अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौं गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखदे हां प्रकृति पंछियां नूं जगा देंदी है, पशुआं नूं जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदियां चिड़ियां पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे ने। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है, चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठदे ने, गऊआं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है, वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नूं प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नूं भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे ते देखिया जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम दे मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा दे निकट आण लई इसनूं प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नूं कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नूं जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करदे सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतरमुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ दे चाया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। किंज ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियांदा है। ए नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ए जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है, मन भजन भी चाहुंदा है। इस समा कहिंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जांदी है, समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहिंदे ने, जे एक होए ता उगवे रुत्ती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे पर बीजन वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल प्रफुल्लत भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ए जो रात दा चौथा पैर है, इसनूं साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ए ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनूं इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुबह जो स्वभाविक अल्लाह नूं चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहा भी किसे मनुख दे अंदर अंतरमुखी होण दी जागृति है तो यह समा बहुत मदद करदा है, बहुत मदद करदा है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतिशकरण दी धरती देच जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है, बरकता नाल झोलियां भर जांदियां ने, ओ लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे विच पुगे हुए

और दोवें बेमैने हो जाणगे। लेकिन दोहां दा सुमेल कारज दी सिद्धि है, जैसे मला ते बेड़ी दा मेल, जैसे पवन ते फुल्लां दा मेल, जैसे वैद ते जड़ी बूटियां दा सुमेल, जैसे बीज ते धरती दा मेल, जैसे पानी ते साबण दा मेल कपड़े नूं साफ करदा है, इसे तरीके नाल स्त्री ते पुरुष दा सुमेल ही संसार दी रौनक है और जीवन सुखमई है। बराबरी हकूक दे तल ते हो सकदी है और है। जे रब्बी रस माणन दा पुरुष नूं अधिकार है, स्त्री नूं भी उतना अधिकार है। लेकिन तन ते मन दी बराबरी परमात्मा ने नहीं की थी। इस वास्ते कम कारज कुछ वंडे हुए ने। घर संवरदा है, स्थिर रहिंदा है, महान आउंदा है स्त्री करके, पर घर दे बाहरों सुख आंदा रहे, संपदा आंदी रहे, तो भजन दौड़न लिए पुरुष चाहिदा है। पुरुष का शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है, स्त्री नालों ज्यादा सख्त है और ज्यादा भारी भरकम कम कर सकता है। यही कारण है कि पुरुष पहलवान नाल स्त्री पहलवान मुकाबला नहीं कर सकेगी। जिथे उसका मन कोमल है, शरीर भी कोमल है और इस कोमलता दी लोड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार विच कुछ कोमलता बच जाए। अगर पुरुष कोल भी कुछ कोमलता है तो ये स्त्री दा गुण है और स्त्री करके है। थोड़ी बहुत तर्क जे स्त्री दे तल ते भी मिलती है तो पुरुष करके मिलती है, वो थोड़ी बहुत ते चाहिदी है ताकि उसकी कोमलता दी रक्षा होवे। कुदरत दा एक नियम है कि फुलना दी रक्षा कंडे ही कर देने, फुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सोने दी रक्षा लोहे नाल आउंदी है, कोमलता दी रक्षा सख्ती नाल आउंदी है। इस नूं प्राचीन विद्वान ते इंज भी कहंदे रहे ने, स्त्री नूं हर समय पुरुष दी सख्ती दी लोड़ है, रक्षा लई सुरक्षा लई। प्रथम पिता दी, पति दी, फिर पुत्र दी, ताई जो है ये सुरक्षित रह सकती है, अपनी इज्जत आबरू नूं बचा के जो है रख सकती है। व्यास जी ते कहा करदे ने उन्हां दे बोल कि स्त्री प्रकृति दी बेटी है, इस ते इंसाफ चाहिदा है और प्यार चाहिदा है, सत्कार चाहिदा है। सिख साधी साहब कहंदे ने जिस घर दे चों स्त्री दे चीखण चिलाण दी आवाज बाहर आउंदी है, उस घर दे चों सुख ते संपदा मान लो बाहर जा रही है। वाकई उस घर दियां खुशियां, उस घर दी शांति, उस घर दा सुकून बाहर चला जांदा है जिथे स्त्री दा रुदन घर दी चार दीवारी तो बाहर चला जाए। कवि तुलसी ने स्त्री दे कुछ वक् वक् रूप इस ढंग नाल जो है बयान कीते ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रखदी है, उन्हों रामायण विच रामचित मानस विच कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते हैं। जग प्रतिवर्ता चार विद अही, वेद पुराण श्रुति अस कही। इस तरह आख्या है, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं
आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री उसकी दृष्टि जगत देच, उसके पति तो बिना और कोई भी पुरुष नहीं है, वो ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। इसनु अध्यात्मक रंगन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दिती है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने हा, धन सती दरगे परवाने हा। जिसने परमात्मा दी झलक अपने पति दिच देखी, महाराज कहने धन है वो सतवंती, धन है वो स्त्री। कोशिश ते होई सी साडे देश दे कि स्त्री पुरुष नू परमेश्वर आखे, परमेश्वर दी झलक वो पुरुष देचों देखे, और पुरुष स्त्री नू देवी आखे, वो प्रभु दी शक्ति दी झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इसक नू देवी दिखाई देवे और एक नू परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जाता है, घर हरि मंदिर बन जाता है। पर एक नू भूत दिखाई देवे, एक नू डायन दिखाई देवे, घर ही नरक बन जाता है। पता नहीं पृथ्वी ते कितने घर नरक बने हुए ने, क्योंकि घर च कोई डायन रह रही है, कोई भूत रह रहा है। एक नू डायन दिखाई दे रही है और एक नू भूत दिखाई दे रहे। जीवन दा ढंग ना आया, एक दूजे नू समझण दा ढंग ना आया। कवि तुलसी कहंदे ने जिथे चंगे माड़े पुरुषां दे चौंदे ने, उथे चंगे माड़े इस्त्रियां दे च भी होंदे ने। जैसे पृथ्वी ते सिर्फ दिन नहीं रात भी है, मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं औगुण भी ने। ओ औगुण पुरुष दे अंदर भी ने, ओ औगुण स्त्री दे अंदर भी ने। उत्तम स्त्री दी तस्वीर कशी करदे हां, तुलसी कहंदे ने उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। मद्धन पत प्रत पर प्रत, देखियत ऐसे भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उस तो थले दी है उते इस तरह समझ दिए पर पुरुष नो ये पिता है, भरा है, पुत्र है। उदी दृष्टि इस तरह दी होंदी है। अगां चल के कवि तुलसम कहंदे ने कि बिन अवसर भय तह रह जोई, अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया, बिना मौका मिलिया, उसने बस अपनी असमत साम के रखी है, वरना वो लुटान नो तैयार है। ये सब तो नीवी है, ये सब तो निखेद है। अगर ऐसा निखिदपना स्त्री ते लागू होंदा है तो फिर पुरुषां ते भी लागू होंदा है। पर गुणा दे तल ते अगर देखी है तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकदा है, स्त्री प्राप्त कर सकदी है। घर विच धन संपदा है, वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष दा है, अद्धा अधिकार स्त्री दा है। अज ते कानून भी ऐसा मनन लग पे है। ये गल वखरी है कि पुरुष दा अहंकार बराबरी देन नू अजे भी तैयार नहीं, लेकिन इस हद तक ते बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है, मन अलग है, जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री दी नकल करे, स्त्री वर्गा बनना चाहे, मुश्किल। और अगर स्त्री पुरुष दी बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे, ये उसकी सब तो वड्डी भूल होवेगी। क्यों कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पाके, पुरुष जैसियां जुतियां पाके, पुरुष जैसी चाल चल के,

पुरुष जैसे बोल बोल के और पुरुष की तरह ही गंदे नशे जो है करके स्त्री पुरुष जैसी तो नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हां, इन्हों बारों भी समझिया समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी, पर चमेली चमेली भी होण तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तल ते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने, तो होया कि घर उजड़ गए। स्याणे ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है रसदा है, तो घर वसदा है स्त्री करके। ते जद घरों स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह, तो घर घर ना रहा, वो ते सिर्फ मकान रह गए, इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे दा सहारा है, असली दौलत है। जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टूट भज गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां दा प्यार नहीं मिलिया, मां दी गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उना दे प्रवेश नहीं कीती, तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए, उथे औलाद भी सखणी होई। धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री ते पुरुष दी मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आन वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथे सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने, अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया दे इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री दा पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना, और पुरुष दा इस बराबरी नो किसे हद तक कबूल करना और किसे हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता सी, और किधरे ये अपनी महानता नु समझ लवे तो घर मंदिर बन सकता है, घर हरी मंदिर बन सकता है, नहीं ते उजड़िया होया खोला, उजड़िया होया एक खंडर, इस तो बिना होर जो है कुछ भी नहीं होवेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री दा पक्ष पूरदे होया के है, जे कुछ महान मनुखा करके संसार दा इतिहास रौनकीला बनया होया है, वाकई इना कुछ महान हस्तियां नू इतिहास दिचों कढ दईए, सारा संसार बेरौनक हो जांदा है, पर इना हस्तियां नू जन्म देने वाली मां ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, तो ये फुल किथे खिड़ने सन, और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नू बराबरी दिती। दैवी गुणा दे च भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष है। इसी तरीके नाल सूरवीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणदे जाइए शांति स्त्री है।

क्रांति पुरुष जो है मन लीए, पर क्रांति शांति ते आधारित होवे, सूर वीरता सहन शीलता ते आधारित होवे, और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे, ताई खूबी है और मानसिक तल ते आनंद है। जे मानसिक तल ते इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे, इना दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते, सत्संग दा आनंद दोवें माण सकदे ने, अमृत दोवें पान कर सकदे ने, और इस तल ते धार्मिक दोहां दी बराबरी और पदार्थ दे तल ते दोहां दी बराबरी किसे भी तल ते इस नूं पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखिया गया, और हर तल ते इस दे गुणा नूं सलाहिया गया, सन्मानिया गया। कहिंदे ने जद कोई पुरुष बंदगी करदिया करदिया पूर्ण पुरख बनता है तो उस दे अंदर इस्त्री दी दया ते कोमलता प्रगट हो जाती है, उस दे बोलां दे च भी इस्त्री भाव आ जाता है। जैसी कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल इस्त्री भाव दे ने, मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ए बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहंदे ने कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पिर हो हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जब उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जब उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जब उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरबीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जब उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है, इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखण वाले ने। पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल, पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन देच वंडी हुई है। पशुआं नूं लईए, पक्षियां नूं लईए, बनस्पति तक नर और मदीन देच वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नूं देखिए, अस्तूल जगत नूं देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम ईसाईयत यहूदी पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नूं तराश के औरत दा जहूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप दे च कबूल करनी पएगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक दे च ए दो ने और दोहां दे च ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नूं बहुत सोहणे ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार,
नार में पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानियो, एक गल नु समझो, जानो पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष। दोहां दा वजूद दोहां करके है, इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवे मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है, इस 60% पुरुष है, 40% इस देच मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है, इस 60% स्त्री है, पर 40% इस देच पुरुष है। साढ़े देश ने नारी नो अर्ध अंग आख है, एक गल वखरी है कि कहन दा लब्बो ले जा अर्थ समय दे नाल बदले। नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इस दे अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना रहन देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूरन। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे चै, और पूर्ण होना चाहता है, जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावत ने, हम जिन्स तो प्रभावत नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है, पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नो संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया, उस दा नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया, पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च, वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैन है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरआणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या पुरुष आख्या।
अगर और नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन का टिकाओ भाव नाल आउंदा है, मन नूं सूझ बूझ ज्ञान नाल मिलती है, तर्क नाल मिलती है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी के अंदर पुरुष, पुरुष के अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष के अंदर अगर भावना है, भक्ति है, तो अधूरी। स्त्री के अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है, तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबल आउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार का चलना ही संसार का चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देंगे, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उना नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूह दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकता। सारे ही त्याग कर दे ने स्त्री दा, और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्त ही खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नो चलाए मान रखना चाहती है। ये ताई चल सकेगा परिवार चलन, परिवार चल रहे है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सौरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सौरे, तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलदा है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचण दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञान हीणी है, तर्क हीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत देच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत देच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है कि एक कस्बे नू पिंड नू अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चो निकल गए,
लेकिन आमने सामने दो रहने वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चो निकलन दे च असमर्थ रह गए। अंधा टटोल टटोल के बुए तक पहुंचे है और यही हाल पिंगले दा सी, बुए ते बैठे। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेखे है अंधे नो और आवाज मार के आख्या, मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है अंधे दी पिट ते ये पिंगला बैठ गया, रस्ता दस्ता गया और रस्ते ते अंधा चलदा गया। इस तरह दोवें अग दे चों निकलन दे सफल होए। हकीकत है संसार दी अगन दुखां दे चों निकलन दे च स्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है और दोवें निकल सकदे ने। अंधे नूं पैर मिल जाणगे और लंगड़े नूं पैर मिल जाणगे, अंधे नूं अखां मिल जाणगियां। हकीकत है, ये सच्चाई है। पैरां दी सारी गति किसी हद तक दोहां दे सुमेल तो होवेगी और सारा देखना दोहां दे सुमेल तो होवेगा। रुक जाएगा परिवार तो संसार रुक जाएगा। ये दोवें रुक गए तो जगत रुक जाएगा। धार्मिक दुनिया रुक जाएगी अगर भावना ना रही, ज्ञान ना रहा। परिवार टूट जाएगा अगर स्त्री ना रही, पुरुष ना रहा। जिथे स्वभावक एक गुण है स्त्री दे अंदर, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, भावना मन नूं टिकाण दे च बड़ी समर्थ है, प्रबल है। यही कारण है कि घर दी चार दीवारी दे च सारी जिंदगी स्त्री बड़ी खुशी नाल कट लेंदी है, क्योंकि टिकाओ है। भावना मन नूं टिका के रखदी है, श्रद्धा मन नूं टिका के रखदी है। और एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर दे च नहीं बैठ सकेगा। तर्क उदे पैरां नूं गति देंदा है, भटकांदा है, चल। इस वास्ते कहिंदे ने अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी, अगर भाव ना होवे तो घर दी दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है, श्रद्धा प्रवान प्रधान रखी है। ये अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रखती है, पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखता है। प्रबल भावना करके घर वसिया रहिंदा है और प्रबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैलती जाती है, वधदी जाती है। लेकिन कुछ स्वभावक औगुण भी है स्त्री दे अंदर पुरुष दे अंदर। स्त्री दे अंदर स्वभावक जो औगुण है बड़ी प्रबल ईर्ष्या है। स्त्री दी स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्ष्या है और इस ईर्ष्या करके, ईर्ष्या करके, जेलसी करके कई दफा घर नरक बनता है। देखण दे आ है बहुते घर मर्दा करके नहीं टूटते, स्त्री दी ईर्ष्या करके जो है टूट जाते ने। स्त्री दा स्त्री नूं बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। सस ते नूं देराणी ते जठाणी परजाई ते निनाहण मुश्किल है एक दूसरे नूं सहन करन, बर्दाश्त करन। यूरोप दी दुनिया ते सारे परिवार टुट गए ने और एशिया देच
ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਫੈਲਾਓ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਗੁਣ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜੈਲਸੀ, ਇਸਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵਨ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨਿੰਦਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਰਕ ਦੀ ਦੁਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼। ਇਹ ਤੇ ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਹੀਨ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਂਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਪਾਂਚੋਂ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜੇਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਦੁਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੀਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਹੈਰਾਨਗੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਕਿਧਰੇ? ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਰਮੋਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼, ਸੰਗਤਰਾਸ਼, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਕਵੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਕ, ਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲੇ।
क्योंकि ये पछड़ी हुई है, हर तल ते पछड़ी हुई है, हर पक्ष ते पछड़ी हुई है, पीछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लंगे है, दौर लंगे है, जिथे स्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान दी तरह, वस्तुआं दी तरह स्त्री भी एक वस्तु सी, जैसे कोई धनवान गिणिया जांदा सी, इस दे कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना दी गिनती दे च ओ भी आउंदा सी, इस दे कोल स्त्रियां ज्यादा ने, इहदे कोल 400 स्त्रियां ने, इहदे कोल 600 स्त्रियां ने, दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करनी। इस दौर दे च भी ऐसे नवाब महाराजे होए ने, 400-400 राणियां और 600-600 बेगमा रखण वाले मौजूद, और इन्हां दी आम जो है चर्चा एक धन सी। किसे हद तक ऐसा दौर भी लंघे है चीन देच, स्त्री नूं पुरुष ने मार दिता है तो एक जुर्म भी नहीं समझिया जांदा सी। जैसे कोई अपने सोने नूं चिकड़ दे सुट देवे, जैसे कोई अपने घर नूं आप ही अग लावे, कोई अपनी धन संपदा नूं साड़ देवे, तो अपना धन सी आप फूके है, कोई जुर्म नहीं, स्त्री एक धन सी खत्म कर देता है, कोई जुर्म नहीं। ऐसा दौर भी लंघे है, और ऐसी भी धारणावां रहियां ने कि स्त्री दे अंदर आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। गर्स के आदि काल तो स्त्री नूं पशु कहण दा, पछड़िया होया कहण दा तर्कशील लोगां कोल जिहड़ा तर्क सी ओए है कि इह कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके, अवतारी दुनिया विच नहीं दिखाई देंदी, और ना ही कोई चोटी दी विज्ञान कवित्री, संग तराशी संगीत कला दी दुनिया विच, ज्ञान दी दुनिया विच, सुधार दी दुनिया विच, अवतार दी दुनिया विच पुरुष ही पुरुष अग्गे दिखाई दे रहे ने। इस वास्ते स्त्री दे पछड़े होण दा इह सब तो वड्डा सबूत है, इह पछड़ी हुई है, इह पछड़ी हुई है। आया धन गुरु नानक देव जी महाराज दा जमाना, आपने इस तर्क नूं बड़े सोहणे ढंग नाल जुठलाया, परे सुटिया, ये गलत है, ये सही नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। आप कह रहे ने स्त्री किस तरह अवतार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति ते अवतार नु जन्म देने विच लग गई, वो आप किस तरह ग्रंथकार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति ते किसे ग्रंथकार नु जन्म देने विच लग गई। जैसे हर पुरुष अवतार नहीं आउंदा, ग्रंथकार नहीं आउंदा, साइंटिस्ट नहीं आउंदा, कलाकार नहीं आउंदा, हर स्त्री कलाकार नु अवतार नो संत नो जन्म देण वाली भी नहीं आती। जो किसी संत नो जन्म दे सकी है, वाकई उसकी कुख ऐसी ही सी, महान सी। जो किसी अवतार नो जन्म दे सकी है, और अवतार ने किसी ऐसी स्त्री की कुख चुनी है, तो जितना अवतार पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना संत पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना कोई ग्रंथकार चित्रकार या वैज्ञानिक पूजनीक है उतनी ही उसनु जो है जन्म देने वाली जो है पूजनीक है, क्योंकि उसका समा उसकी शक्ति ग्रंथकार नु जो है जन्म देने दे जो है लग गई। बाबा फरीद कहंदे ने तिन धन जने दी माओ आए सफल से, धनता दे योग है ओ मां, जिसने किसे ऐसे पुरुष नु जन्म देता है जिसने अपनी जीवन यात्रा नु सफल कीता है, जो फकीर सी, जो संत सी, जो अवतार सी, इसनु जन्म देता है, पूजन योग है ओ मां, धनता दी योग है ओ मां। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह स्त्री नु पुरुष दे बराबर ते
खड़ा कर देता, अवतार दी बराबरी।

0: अवतार दी मां नूं खड़ा कीता, ग्रंथकार दी बराबरी ते ग्रंथकार दी मां नूं खड़ा कीता और ऐलानिया के आ सौ क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यहूदिया दे धार्मिक मंदिर इस्त्री लई बंद ने, इस्लाम दिया मस्जिदा इस्त्री लई बंद ने, वेद पाठ इस्त्री नहीं कर सकती, जनेऊ इस्त्री जो है नहीं पहन सकती। और जैन धर्म ने ते इत्थे तक कह दिता इस्त्री शरीर दे इस्त्री दे चोले दे मुक्ति नहीं हो सकती, इस्त्री नो एक जन्म ते पुरुष दा लेके ही मोक्ष गति नु प्राप्त करना होवेगा। इस्त्री साधना करे जप तप करे उसका अगला जन्म पुरुष दा होवेगा, फिर साधना करे तो साधना दी सफलता नाल उसनु मुक्ति मिलेगी, इस्त्री चोले ते मुक्ति ही नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान इस्त्री पुरुष नालों बहुत छेती मुक्त हो सकती है, क्योंकि इस दे अंदर भावना प्रधान है और इस दी भावना प्रधान अवतारा नू ग्रंथकारा नू भक्ता नू जन्म देंदी है। ये महान है, ये पूजनीक है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा।
1: उच्चारण करो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी का जन्म पिंड तुवान जिला टांक उस धरती ते होया है। जदों आपां जयपुर तो कोटे नूं जाइए जां कोटे नूं राजस्थान विच जयपुर नूं जाइए ते रस्ते दे दरमियान एक शहर आउंदा है जिस नूं टांक किया जांदा है। इस टोंक शहर तों थोड़ा जा अंदर नूं जा के पिंड तुआन है। ऐद की सबब बनिया सन्मान योग भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा और दास नूं भगत धन्ना जी दे उस अस्थान ते कीर्तन औत कथा करन दा सुभाग मिल गया जिस थां ते भगत धन्ना जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती कीती है। भाई साहब नाथ दे नाल सन कई बिगे जमीन अज भी भगत धन्ना जी दे नाम ते बोलदी है। भगत धन्ना जी दा ओ खूह है कि जिस खूह दे उपर उन्हां ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती और परिपूर्ण परमात्मा ने उस भगत उस महापुरख दे कारज अराज कीते सन। भाई साहब पिछले साल नाल सांसी कठे सी ते उथे भी विचारां भगत धन्ना जी बारे होईयां। मैं सिर्फ उन्हां दे जीवन संबंधी एक अर्ज करनी चाहना हां कि आम तौर ते भगत जी दा जिक्र भाई गुरदास साहब जी दी उस पौड़ी नूं आधार बना के कीता जांदा है जिस विच ठाकर दी पूजा दा जिक्र कीता गया है। इहदे विच कोई शक नहीं कि जदों इंसान परमार्थ दे मार्ग ते चलदा है ते कई वारी कितना समा उहदा कर्म कांडां दे रूप विच ही बतीत हो जांदा है। इहनूं ध्यान नाल मेरी बेनती नूं सरवण करियो। पर वो कर्म कांड तो उदो मुक्त हो जांदा है जदो उदे अंदर सच्चा ज्ञान ते समर्थ गुरु कोलो उनु गुरु दीख्या मिल जाए, शब्द दी रोशनी विच जीन लग पवे ते वो बाहर मुखी कर्म कांडा तो सदीव काल लई मुक्त हो जांदा है। दास गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत धन्ना जी दे तीन शब्द ने, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।

उन्हें इन्नी भावना नाल परमात्मा की भगती की। तन गुरु अर्जुन देव महाराज कहिंदे ने उन्हें परमात्मा के प्रतख दर्शन किए, जो कुछ उन्हें अपनी जबान तो कहा परमात्मा ने उस भगत के हर कार्य सिरे ला दिता। यह पवित्र शब्द है कि गोविंद गोविंद गोविंद संग नाम दियो मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना। इते शब्द छीपरो वर्त्या है कि छिंबा, गोविंद गोविंद गोविंद संग नाम दियो मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना। बुनना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। ते महाराज कहने नीच कुला जोलारा भयो गुणी गखीरा, रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हो वा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर कर सुनिया, हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। ए चार महापुरखां दा जीवन सुन के ते इत्थे एक दास अर्ज करनी चाहेगा। तुसी बाणी पढ़न वाले समझन वाले बैठे हो ते भाई साहब जी दी अंदर दी एक सिख है कि जिन्हां दी बाणी असी गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ने आ उन्हां भगतां महापुरखां दा जीवन ते उन्हां दी रचना विचों कोई संगत नाल सांझ पाई जाए। मैं कई बारी सोचना क्योंकि सानू जो कुछ शुरू तो सुनाया गया असी उन्हूं अपने दिमाग विच फीड कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न दा यतन ना कीता। क्योंकि अज जो मैं बोलांगा आप सुनोगे जी सदके सुनो, पर एक बेनती है कोई भी बोले खुद गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल आप सांझ पाओ, ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द साडे जीवन की अगवाई करे, सानू उस खजाने की जानकारी मिलेगी। हुण अज तक साडे नेड़े सुल्तानपुर है, शायद दास ने अर्ज पिछले दिन भी इत्थे समागम सी कीर्तन दरबार उत्थे कीती होवे। अज तक मैं बाबा कालू जी की याद विच कदी किसे प्रोग्राम नू अटेंड नहीं किया। हो सकता कीर्तनीय गुरसिख बैठे ने शायद इन्हां ने भी ना किया होवे। बाबा कालू जी की यादगार किते ज्यादा नहीं मिलती, उन्हां दी याद विच किते गुरमत समागम नहीं देखे। कारण इको, क्योंकि साडे दिमाग विच इको गल पा दित्ती गई, वह झिड़कते रहे वह मारते रहे उन्हां नूं समझ ना पई। पर एक मैं बेनती करांगा, वह पिता ने पिता अपने पुत्र दे जीवन नूं चाहुंदा है अपनी बिरती नाल कि बहुत तरक्की करे, पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी देखियो जिथे धरती नूं धन किया गया, मां नूं धन किया गया, कुल नूं धन किया गया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच गुरु दे पिता नूं भी नमस्कार कीती गई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इक बचन आउंदा है कि धन धन पिता। हुण की आपां बाबा कालू साहिब जी नूं धन धन नहीं कहांगे, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। ये चार शब्द ने कि पिता तन, कुल तन, मां तन, ते चौथा शब्द फिर क्या गया गुरु नूं तन। हुण यह जिहड़ा शब्द आपां पढ़ने आ कि गुरु ग्रंथ साहिब विच तां बाणी परमानंद दी दर्ज है, पर धन्ना जी नूं इह परमानंद बारे क्यों ना गुरु अर्जुन देव ने विच अंकित कीता। बाणी भगत रामानंद जी दी भी दर्ज है, पर चारां भगतां नूं विशेष करके हजूर ने अपने शब्द विच उदाहरण वजो लिया, परमानंद रामानंद भगत पीपा जी, भगत बेणी जी, भगत तरलोचन जी, बाबा फरीद साहब जी, उन्हां दे भी अमृत बचन दर्ज ने। पर चार भगत क्यों चुने गए, नामदेव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत सैन जी। दरअसल मेरा मन एक गल कहिंदा है कि धन गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द दर्ज करन दा इको कारण सी कि एक जिमीदारा करन वाला उन्हूं यह गल दसी गई कि जिन्हां नूं पिंडां दे लोक नीच कहिंदे ने देख उन्हां उपर परमात्मा की इन्नी कृपा हुई, वह भगती कर करके परमात्मा विच अपेद हो गए, ते कहिंदे ने इन्हां दे जीवन नूं सुन के एक हल वाण वाले ने परता

परमात्मा दे दीदार पा ले। रामानंद परमानंद एदा मतलब यह नहीं कि उन्होंने जीवन जा उन्हां दी रचना विच कोई अंतर है, क्योंकि उन्हां संबंधी यह मनौत है कि वह स्वर्ण जाति विचों संबंधित ने, पर इन्हां भगतां ने एक क्रांति लियांदी कि जिन्हां नूं लोग कहिंदे सन नीवी जात दे, उन्हां ने सच एवे कि समाज दीआं नफरत दीआं ठोकरां खांदिआं होइआं वी परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर लिया है। कबीर साहब का एक सलोक है, वह कहिंदे सच एवे कि लोग मेरी जात ना नाम लैके मजाक उड़ाते, मैं शहर विच लंघना पिंड विच लंघना ते उच्ची जात वाले लोग मेरा नाम लैके पुकार देने, ते देखो महापुरखा ने वचन दर्ज किते, पर कहिंदे परमात्मा मैं इस जात तो कुर्बान जाना, जे ए ठोकरा ना मार दे ते मेरे अंदर तेरी भगती का एहसास किवें पैदा होना सी। उन्हां दे अमृत बोल ने कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, हर कोई मेरी जात हसदा है मजाक करदा है। कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, बलखारी इस जात को जे जप्यो सिर जिंगार। कहने मैं कुर्बान का यह दे तो कि जिस जात विच रह के मैनू परमात्मा की भगती मिल गई। सिर्फ मेरी बेनती सी कि चार भगतां का जीवन सुन के वह महापुरुख भगती कर लगा। असी शब्द पढ़ लेने हैं क्योंकि मैं लड़ी जोड़ना चाहना। पहला शब्द कह के भरमत फिरत बो जन्म बिलाने तन मन धानी धीरे, ये सारे शब्द विच भगत जी ने किते ठाकुर पूजा का जिक्र नहीं किया। इस शब्द दियां अखीरलियां तुकां ने कि धन धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया, कि धन्ने ने धरती दे सहारे परमात्मा नूं पाया। ते देखो ना शब्द यह नहीं लिखिया कि किसे पत्थर नूं पूज के, उन्हां शब्द वरत्या कि मिल जन संत समानिया, परमात्मा की भगती करने वाले महापुरखां की संगत करके। हुण उस तो बाद जिहड़ी अगला शब्द कह महला पंजवां, गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोलारा पयो गुनी गहीरा, रविदास तवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हो वा साध संघार दर्शन पाया। ए बिद सुन कै बिद दा अर्थ सानू रुकना पेगा कि उन्हें आ बिद आ सारे तरीके सुने, इस घटनाक्रम नूं सुनिया, उन्होंने तवारीख नूं सुनिया, उन्होंने भगतां दे जीवन नूं पढ़िया सुनिया। ए बिद सुन कै जाटरो उठ भगती लागा, ते महाराज कहिंदे मिले प्रताक गुसाइया धन्ना वडभागा। ए संत जन जिन्हां दी सोभद करके उन्होंने पाया। मैं सिर्फ उन्हां दे शब्दां नूं अपने निर्धारित समय विच सिद्धांतक जो पक्ष है वह अर्ज करनी चाहांगा। पहली तुक है गुरु ग्रंथ साहब दे राग आसा विच भगत जी दी कि हे प्रभु ऐस जीव आत्मा नूं भरम दिया भटक दिया पता नहीं किन्ने कु जन्म हो गए, भरमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, एक दो नहीं बहुत जन्म हो गए ने, पर अज भी इस अंदर नूं समझ नहीं पई, तन मन धन नहीं धीरे। तीन शब्द ध्यान दिया, जे मैं पहली तुक सिर्फ लैनी ते दूसरे दो शब्दों की व्याख्या करा। तन मन तन नहीं धीरे, ना तो तन ने सदीव काल धीरे का अर्थ धीरज, धीरज का भाव अर्थ टिकना। कहने ना तो तन ने टिकना है, ना बंदे का मन टिकदा है, ते ना जड़ा ए तन दे अमार लाई बैठा है। सच एवे ना तिना चीजा विचों कोई चीज भी बंदे दे नाल निभण वाली नहीं। बस इन्हों असी थोड़ा जा विचार लीए, तन मन तन नहीं धीरे। मैं दो दो चार चार प्रमाण सिर्फ अर्ज करांगा बाणी विचों। देखो पहली गल, भगत जी कहिंदे आ तन केड़ा धीरे, यह केड़ा टिका विच है। आम तौर ते असी शब्द वरतने आ कि मौत वेले तन बिनसदा है, नहीं बेनती है, जन्म तो शुरू हुंदा है, मरण तक इहदी प्रक्रिया मुकम्मल हुंदी है। यह तो साडे जिउंदे जी अपना रूप बदली जांदा है। जो अज मेरे तन कोल है, अज तो 10 साल पहला स्वरूप नहीं सी, जे रब जिंदगी देगा ते अज तो 10 साल बाद ए चेहरा इस तरह का नजर नहीं आएगा, क्योंकि तब्दीली है, ए टिकन वाला नहीं। इन्हें
ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤੀਏ ਚੇਂਜੇਬਲ ਕਹਿ, ਇਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਕਹਿ। ਤਨ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਦ, ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਕੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਦੀ ਬਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੱਤਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤਨ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਿ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਦੇਖੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਾਨੀ ਧੀਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਲਈ, ਤੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਚੜ ਪਾਹੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿਥਾਓ ਨਾਖ, ਤਨ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਕਹਿ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੱਤ ਝੜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਮਨਾ, ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ, ਤਨ ਦਾ ਤੇ ਧਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ 2 ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੜ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਵੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੰਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਪਰ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੰਦ ਪਹਿਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਰੀਰ,
क्योंकि तन मन तन नहीं तीरे, तेरा तन भुरन लग पिया है, दंद निकल गए, ते बंदा समझदा नहीं। अखां दी जोत चमकदी है, सच एवे ऐसता ऐसता अखां दी जोत मध्यम पैगी, कन्ना दी स्रोत खत्म हो गई। इथों तक कि जेड़े पैर पहाड़ां दे शिखर ते चढ़दे सन, अज ओ बंदा, बाबा साहब ने तां शब्द वरत्या, दुनिया दे लोगो मेरे सराने वजू करन वाला पानी दा कुजड़ा गए, अज मेरे कोल इन्नी ताकत नहीं, मैं उठ के पानी दा कुजा हत्थां नाल पकड़ के मैं वजू कर सका, समर्था नहीं, क्योंकि तन चेंजेबल है। बाबा साहब दे शब्द ने दो श्लोक कहन लगे, उन्हां दे अमृत बचन ने, एक ता है बाबा साहब जी दे अमृत श्लोकां विचों, चबन चलन रतन, तन मन तन नहीं तीरे। पहला तुक मैं लई, पहला सिर्फ इको शब्द लिया तन, फिर मन, फिर तन, तिने चीजा से फिर नहीं। बाबा फरीद साहब कहने, चबन चलन रतन से सुनियर बह गए, खेड़े मुत्ती ढां तन नहीं तीरे, शरीर ने ढां मारी से जानी चल गए जानी दर ते प्यारे, के जेड़े प्यारे अंग जेड़ी एनर्जी रब ने मेनू जन्म वेले दिती, अज तन रो के कहना मेरा ता सारी साथ चल गए। दूसरा बचन उन्हां दा के फरीदा, उन्हां दा अमृत बोच इन्नी निक्की जंगी है, थल डूंगर पवियोम, अज फरीदा कुजड़ा सह कोहां थियोम, अज ओ कुजा सैकड़े को दूर लगदा है। एक उर्दू दे अदीब ने बड़ी सोहनी घटना लिखी है, देखो बंदा स्वीकारदा नहीं कि मेरे तन एक दिन खाक दे सपुरद होना है, कदी नहीं बंदा समझदा। ते अज भी मैं बेनती करा कि असी मौत दी गल करने हां, पर मौत नूं महसूस नहीं करदे। मूले ने भी लिख दिता सी कि मरना सच ते जीना झूठ, पर हकीकत एवे लेखो ने दिता, पर महसूस ओने भी ना किया कि मौत आनी है। वह भी तो बाबा जी दे अमर जीवन नू छड़ के मौत वाले पासे गया, जिथे बचना चाहता सी मौत उथे कर खलोती हुई, सच्चाई नहीं स्वीकार की। कहने एक बादशाह सी, वह एक फकीर नू मिलन वास्ते गया। फकीर दा अर्थ वैसे आपां उर्दू विच मंगता करने खां, फकीर दा अर्थ मंगता है, पर असल च हर शब्द जेड़ा उहदे अर्थ बड़े गहरे ने। जदों फकीर लिखिया जांदा, भाई साहब उर्दू दे जानकार ने, ते जिन्ने भी शब्द बोलदे ने काफी ज्यादा इन्हां दे उहनां शब्दां विच उर्दू शब्दावली सानूं मिलदी है। हुण जदों असी फकीर लिखने आ, फे काफ ये तेरे, ये फकीर बनदा है, जे असी पंजाबी च ना लिखीए। असल च फकीर दा अर्थ, मंगते दा अर्थ ओ नहीं जिहड़ा बाहर मुखी मंग रहा है। बाणी विच जदों किते जिक्र मिलेगा ते ओदे विच फकीर दे अर्थ आपां बहु गिनती विच रब दे दर दा आज मंगांगे, मंगता रब दे दर दा। उंज इक विद्वान ने फकीर दे अर्थ कीते, ओ कहिंदा जो पहला फेक है जिहनूं आपां फफा कहिंदे, फफा कक्के नूं बिहारी ते रारा फकीर बनेगा, उथे फे काफ ये तेरे हरूफ चार ही ने। पहले फे का अर्थ फखर, किन्ने फकीर होवे जेड़ा दुनिया ते फखर नहीं करदा, धन ते फखर नहीं करदा, जेड़ा केवल एक अल्लाह दे फखर ते जींदा, रब उत्ते माण करके जींदा। दूसरा अगला शब्द है काफ, काफ का अर्थ करदे ने कुदरत, जिवें भाई साहब कह रहे सन कि सारे विच परमात्मा दिसे। फकीर होवे कि जरा रब की कादर की बनाई हुई कुदरत विचों अल्लाह दे रब दे जलवे देखदा। तीसरा है ये दा अर्थ जेड़ा यादे खुदाए, खुदा की याद भी जींदा है, जेड़ा रब ते फखर करदा, कादर की कुदरत विचों कादर दे झलके देखदा, परमात्मा की याद भी जुड़दा है। ते रे दा अर्थ कि वह इन्ना रहम दिल है कि जदों उहदे उत्ते भी कोई वार करदा, वार करन वाले दा भी भला कर दिंदा। फकीर दे अर्थ बड़े गहरे। कहिंदे ने एक फकीर बड़ा मस्ताना, रब दी याद जुड़िया होया,
ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ

रह गए। पूजा रूम बना लिया, बाबा जी का कमरा बन गया। मैं कहना जिन्हें रब नू पाना सी ओ मारू थल विच बैठा कूकी गया। लोग मंदिरां विच पत्थर पूजदे रहे, रब खूह ते बैठा होया पा के चला गया। अजकल कई बार सियाने सुनांदे भी नहीं जोक भी जिथों के एड्रैस दिते होंदे ने उत्थे बैठा कोई नहीं, जे बैठा किसी होर। तां बुल्ले ने कहा सी, बुल्लिया ठाकर द्वारे ना जाई, इहनू नैगेटिव ना लिया जे। जिथे मोमन भोग लवाए विच मसीती पैंदे धक्के, मुल्ला त्यूड़ी पाए। एड्रैस तां इही है ना, रब रहिंदा पिया मंदिर गुरुद्वारा। भाई साहब जिक्र कर रहे सन, आ शब्द उन्होंने बड़ा वरत्या, मैं नहीं वरतना। उस शब्द से बुल्ला कहिंदा है कि ठाकर द्वारे ना जाई जिथे मोमन भोग लवाए विच मसीती पैंदे धक्के, मुल्ला त्यूड़ी पाए। अमीर जादिया ने बूहे उत्ते चोबदार बहाए, कहन लगे बुल्लिया मल दरवाजा रब सच्चे दा जिथों दिल दा फिक्र मिट जाए। वो रब दा दरवाजा की है, केड़ा दर है उहदा। बाहर दे पूजा स्थल बंद किए जाते ने, जिदे अंदर रब दे बूहे खुल जान वह बाहर दे मंदिर भी कमा के आ जाते। नामदेव जी ने की कीता, पत्थर दे मंदिर चो धक्के मारे, पर दिल मंदिर विचो ठाकुर नूं कौन कढेगा जो दिल मंदिर विच विराजमान है। मैं सिर्फ संखेप जिहा, भगत जी कहिंदे ने कि जननी कह रहे उधर उदक मैं पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्न मैं राख है ऐसा खसम हमारा। अगला बचन, कुम्मी जल में कछू कुम्मी पानी विच, तन तिस बाहर, तन दा अर्थ बच्चा, ओदे बच्चे ओदे अंडे, आंडे बाहर ने, कछू कुम्मी कदी आंडिया ते नहीं बहिंदी क्योंकि वह आंडा दे के पानी चली जाती है, फिर वह ध्यान नाल पानी सट दी आंडे वाले पासे। इन भाई गुरदास साहब ने लिखे, कछू आंडा ध्यान तर कर पर पक नदी विच आना, वो आंडे का ध्यान टिकांदी, ओदे ध्यान नाल आंडे विच ओदा बच्चा विकास करदा है, ध्यान नाल आंडा तोड़दी है, ते ध्यान नाल मां बच्चे नूं अपने कोल लै आउंदी है। देखो उस एक महापुरख का अनुभव, वो किसी स्कूल च पढ़न ते नहीं ना गए, ते अज सच्ची गल ए जे जेता पढ़िया तेता कढ़िया। महाराज जी ने कहा, कहिंदे कई वारी गुरमत साची खुजत दूर, बहुत सियाणप लागै धूर। एक गल याद रखियो, प्रेमा भगती नाल ते पाया जा सकदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी सारी बाणी च कोई तुक दिखा दिओ जिथे क्या होवे सियाणा बन रब तैनूं सियाणप नाल मिलेगा। पहली पौड़ी च कह दिता, सहस सियाणप लख होवै तां इक ना चलै नाल, ना तू आवै वस कितै सियाणप। महाराज ते इतो तक क्या, जिन्ना सियाणा बनना है रब उन्नी कु होर रस्सी तेरी बना दिंदा तेरे गल च फाई पाण लई। बहुत सियाणप जमका भौ व्यापै, सियाणप नहीं अंदर दी भावना। ओ महापुरख अगला बचन कहिंदा, कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर ते नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। अगलियां तुका ने तीन उदाहरणा दित्तियां, मां दे पेट विच रब रोजी देंदा, ओ तन्या चेते रखी कछू कुम्मी दे बच्चे नूं पाली बैठा ध्यान नाल। ते तीसरा शब्द क्या, पत्थर दे कीड़े ने पत्थर नूं तोड़ के देख रब ता गुप्त बैठे हुए कीड़िया नूं भी रोजी दे जांदा है। पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही, कह धन्ना पूर्ण ताहू को मत रे, जी डराही तीन प्रमाण दिते। हुण अगली गल जिहड़ी मैं करनी चाहना, उन्हां इह तां कह दिता भी मां दे उदर च रोटी दिती, इह भी कह दिता भी देख ओ कछू कुम्मी दे न्याणे बच्चे पाल दिते, ओ तां पत्थर दे कीड़िया नूं रोजी देंदा। हुण इत्थे आ के थोड़ी जी गल पैंदी है, क्योंकि साडे लोक कथा करन वाले ना भाई साहब समझदे ने मेरी बेनती, ओ अजकल इन्ने कु सियाणे हो गए ने ना, ओ समझदे ने जिहड़ा सानू पता है गुरु नानक साहब नूं नहीं सी पता। ये सच जे इहनूं सुखांत ना समझो, ओ फिर एक गल कहिंदे ने बाणी बदल दिओ, इस तरह इह किवें हो सकदा है, इह किवें हो सकदा है। एक दिन एक मौलवी साहब बोल रहे सन मस्जिद विच, ते मेरे कन्ना च आवाज पई, भाई साहब एक शेर कह रहे सन, एक नुकते को पकड़ते हैं

परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया। परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही

परम सम्मान योग युग युग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान दी हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने हुणे ही बड़े प्यार दे नाल साडे अति सत्कार योग भाई साहिब भाई बख्शी सिंह जी होरां ने सतगुरु ने जो अज अमृत वेले हुक्म दी दात सिख संगत नू बख्शिश कीती है उस दी विचार असानू सरवण कराई धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे सलोक और गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उना दे पवित्र मुखार बिन तो उचारण कीती हुई पौड़ी ते धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी पौड़ी नाल इना दो शलोकां विच गुरु अमरदास जी दे उस पवित्र बचन दी व्याख्या सरवण कराई जो सतगुरु जी ने अपने जीवन दे अंदर कमा के अपने अनुभव दे पवित्र बचन सानू बख्शिश कीते। साध संगत आओ जिमें गुरमुखा ने हुक्म किया सी पिछले साल भी के श्री ननकाणा साहब जी का साका भावा वो कई बारी सुना भी चुके हैं आप जी ने कैसे राही भी सुनिया है पर जो आप जी का हुक्म धन गुरु नानक साहब जी का वो पवित्र अस्थान जिस थां ते दाते ने रहमतां दा मीह वरसाया उथे कुकर्मी मसंद ने महंत ने इखलाक तो डिग के कियो जिया कणौनिया कारवाइया कीतियां ते दूसरे पासे उस घर नूं आजाद कराने दे लई सतगुरु दे सिख किन्ने चाओ दे नाल अपने सिर तली दे उत्ते रख के गए ते गुरु नानक साहब जी दा घर अपने खून दे नाल उन्होंने उस अस्थान नूं धो के कुकर्मी महंत तो आजाद कराया सी। करो कृपालता धन गुरु नानक साहब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दी टेक लवो। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो अंदर नूं एकाग्रता टिकाओ बख्श के दाता जी इस गुरु प्यारियां दे इतिहास नूं आप विच वरत के दातार जीओ विचार करा लवो। करो कृपा साध संगत असीस बख्शो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पावन पवित्र पातशाह जी दे अमृत बचन आपां पढ़ने हां कि जिस धरती ते सतगुरु दे चरण पै जान उस धरती दे भाग इन्ने कु चंगे ने कि उह सुक्की कोई धरती भी मानो पूजन योग हो गई। जिन्हां गुरमुखां ने उस धरती दे जा के दर्शन कीते उन्हां गुरमुखां दे अंदर नूं भी टिका आ गया जिथे सतगुरु के चरण पै। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने धरती नूं भी धन कहो जिन्हां ने जा के उस धरती दी खाक अपने मस्तक ते लाई उन्हां नूं भी धन कहो। ते कहिंदे ने गुरु के सिखा उस कुल नूं धन कहीं जिस कुल विच गुरु आया उस पिता नूं धन कहीं जिस घर विच गुरु आया ते उस माता दे चरणां विच नमस्कार करी जिस ने गुरु नूं जणे। हजूर दे अमृत बचन आपां पढ़ने आं

विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो गुण गावा दिन रात नानक चाहो एहो परम सम्मान योग

जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आपने सतगुरां दी इलाही बचन कीर्तन राही सरवण कीते ने, जिथे आपां सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दे पावन पवित्र बचना दी विचार रोजाना करदे आ रहे हैं। उथे अज छठम पीर मेरी पीरी दे दाता अकाल तख्त साहिब दे सिरजनहारे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का आगमन पुरब है। ओ सतगुरु जिसने जदों जालम प्यार नाल ना समझे, कुर्बानी देण तो बाद भी ना समझे, ते उसनू कृपान दे मुठे ते हाथ रख के उनू समझाण दा एक तरीका सानू दिता। उस सतगुरु दा अज आगमन पुरब, आओ गुरु रामदास दे बचन ने ते इस परिवार अंदर गुरता गद्दी गुरु रामदास दे वेले तो ही आई। ताई ता भाई गुरदास ने कहा सी, जान ना देसां सोढ़ियां होरस आजार ना जरे अजावे। आओ सतगुरु दे पवित्र बचन और गुरु इतिहास दी विचार आपां ने करनी। समा थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकदा है, कृपा कर दिया जी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आप कृपा करके विच वरतो, अपने पवित्र बचना दी विचार करा लवो। करो कृपालता गुरमुखो, बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे परसों आपां ने बचन उचारे सन, विचार कीती सी, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर तीजै राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। थोड़ी जी तवज्जो देनी अज दे संत नू, अज दे बचन दी व्याख्या कर ली सानू पिछे झात जरूर मारनी पेगी। ते अर्थ उदन स्पष्ट कीते सन कि जेड़ा बंदा अंदर कपट रखदा है, अंदर ओदा अत दा मैल है, ते बाहरों भावे ओ रागां विच गा के लोकां नू सुनाए, ओ कई तरह दे नाद वजा के संख वजा के कह मैं प्रभु दा भगत हां, भावा ओ अनेकां ग्रंथ पढ़ के कह के मैं आत्मा दी परमात्मा दी मन दी मैं इस विषयां ते गंभीर विषयां ते बोल सकना, पर मेरे गुरु रामदास कहन लगे जे अंदर कपट छल नाल भरिया पिया, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। तेरे सुनाउण गाउण दा कोई लाभ नहीं। एदा मतलब जे अंदर मन विच मैल है ते बाहर गाव्या होया कहया होया थाए नहीं पैना। ते अज सतगुरु ने जेड़े बचन कीते कह लगे, जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे। अगे कह लगे, जे बाहरों भुल चुक बोल दे ती खरे हर पाने। एदा मतलब अगला बचन सी पिछला सी, जे अंदर कपटे ते बाहरों शब्द जितने मर्जी मिठे बोल ले
तेरे शब्दा ने कोई असर नहीं रखना। ते आज कहन लगे जे अंदर तेरे प्यारे बारो शब्द जे किते कड़कन भरे भी बोल देने रब ने तैनू तां भी प्रवान कर लै। देखो कैसा विशा गुरुदेव ने बना दिता। पहला कहन लगे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या की जाए, ते आज कहन लगे जे बारो भुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने। जे बारो ओ भुल चुक बोल दे ने पर मालक नू पा जांदे ने। धन गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी ने इस संबंधी भी प्रमाण दिते। हजूर तो कुर्बान जाइए कोई भी गल गुरु ग्रंथ साहब दी पढ़िए ते सतगुरु नू सिद्ध कर ली उदाहरणा एहो जिया देंदे ने कि बंदे दा अंदर संतुष्ट हो जांदा है। जे सोची दा महाराज तैनू ओ बंदा परवान नहीं, जड़ा अंदरों कुछ होवे ते बाहरों कुछ होर होवे ओनू परवान नहीं करदे। पर इथे जदो भगत दा जीवन पढ़ने पए अज इहदा मतलब इह भी अंदरों कुछ हो रहे ते बाहरों कुछ हो रहे। फर्क सिर्फ इन्ना ओ अंदरों ते बाहरों वाला परवान नहीं। जिदे अंदर खोट ते बाहरों मिठा है परवान ओवे जिदे अंदर मिठास भरी पई है ते बाहरों भावे भुलेखा पांदा मालक ने ओनू कबूल कर लिया। पर अज आपां तकने आ तुसी अपने इस कौम वाली झाती मारीए सानू ओ लोग ज्यादा मिलणगे जिहड़े अंदरों कपट विकारी होणगे बाहरों संत होणगे। सतगुरु ने शायद इसे करके बाणी विच कहा कहन लगे बग्गां बग्गे कपड़े कहन लगे तन दे बस्त्र भी बिलकुल सफेद चिट्टे ने। कहन लगे बग्गां बग्गे कपड़े तीर्थ मंझ विखन रहिंदे भी तीर्थ दे किनारे ते ने उहनां दे खंभ भी अत दे चिट्टे ने। पर साहब कहन लगे किवें ओनू तू चिट्टा कह देंगा घुट घुट जीवां जीआं खावणे बग्गे ना कहिण। जिहड़े जीवां नू घुट घुट के जीव घात करदे ने इहनू भगत कह देंगा। खैर मैं अज दे विषे वल तुरां। गुरु रामदास कह रहे ने जे तेरे हिरदे विच प्रीत है ते बाहरों जे भुल चुक भी बोल देना ना ते मेरा मालक तैनू प्रवान कर लेगा। इहदा मतलब भगत दी बाहर दी किरिया कुछ होर हो सकदी है पर अंदरों ओह जुड़िया है। सतगुरु की बाणी विच इक पवित्र बचन आउंदा है आपां रोज पढ़ने हां। गुरु नानक साहिब कहिंदे जिन पट अंदर बाहर गुदर। पट दा अर्थ है रेशम, गुदर दा अर्थ है पाटे होए कपड़े। कहिंदे ने प्यारिया रब दी बंदगी करन वाले नू पहचानन वाली अख चाहीदी है। आपां केवल भेख देख के कह देने आ कि ए बंदा बड़ा पहुंचिया है ते इस गल चेते रखियो पहुंचे दी भी समझ ओनू लगदी है जिहड़ा आप पहुंचिया होवे। शब्द आपां वर देने आ बड़ा पहुंचिया। सतगुरु ने ते बाणी विच कह दिता कहन लगे जिन्ने वड्डे दी सिफत कीती ना। असीं बाणी विच पढ़ने आ वड्डे कीआं वड्याईआं वाहिगुरु नू वड्डा कहा जां पढ़ने आ वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त जां साहिब दे बचन पढ़ने आ वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा। जे पुछिए भी जेड़े वड्डे दीआं तुसां गल्लां कीतीआं ने सतगुरु तुसीं इहनू किवें बयान कीता। साहिब कहन लगे प्यारिआं इहदा कारण इह ही कि उह साहिब उच्चा है पर जे वड्डे नूं जानना होवे ते वड्डे दी गल केवल उहने कीती जिन्हें आप ओना वड्डा हो के उन्हू टक ले। साहब कहिंदे ने वड्डा साहिब उच्चा थाऊं उच्चे उपर उच्चा नाऊं। पर जिदन वड्डे दी गल कीती एवड उच्चा होवे कोए तिस उच्चे को जाने कोए। आपां कहिंदे बड़ा पहुंचिया इहदा मतलब जे कोई पहुंचिया उह तां पहचान के कह सकदा वाकई बड़ा ए पहुंचिया। इत्थे साहब कहन लगे नहीं जिन पट अंदर जिन्हां दे अंदर नाम दा रेशम है बाहर गुदड़ उन्हां दे बाहर दे बस्तर मलीन ने। ओ कोई ज्यादा पखंड दंभ नहीं करदे असीं भगतां जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन न्यो लगा रब चेती। देखना है विचार रंग हसै रंग रोवै चुप पी कर जाहे परवाह ना ही किसै केरी बाज सचे ना। एक मालक तो बिना उन्हां नू किसे दी परवाह नहीं। बाबे फरीद ने सूफी संत ने भी यही बचन कहन लगे जिहड़े खुदा दे नजदीक ने ना कई वारी उन्हां नू साडी अख पहचान नहीं सकदी। सह बाबा फरीद दा बचन है कि साबर अंदर साबरी तन एवें जलेन खोण नजदीक खुदाए दे भेद ना
ਕਿਸੇ ਦੇਣ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਧੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ

कुछ प्रमाण दिते ने। कई बारी सज्जन कहणगे कि बाहर दा जीवन कुछ होर होवे, बाहर मनुख दी गल्लां बातां विच बिरती कुछ होर होवे, ते की ओ अंदरों जुड़िया हो सकदा है? हां, सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिते ते कबीर साहब ने दो शलोक अपने शलोकां विच अंकित कीते ने। ओ कहिंदे ने नाम देव ते तरलोचन की गल करदे आं। तरलोचन ने एक दिन पूछ ही लिया सी ना, कहिंदा नाम देव जिथे तू बहना गल कई बारी तू नाम दी करना, चार बंदे इकट्ठे होण तू गल गुरु दी कर जाना, पर जदो तेरे बाहर दे मैं लिबास नू तकना वा, जिओ जे कपड़े आए ओह जे पा के तुर पैना। वेखा बनारस दी धरती ते कई ऐसे वैष्णव भगत ने, कई ऐसे साधु ने जिन्हां दे वस्त्र बड़े कीमती ने, उन्हां दे चेले बड़े पिछे ने, पर मैं तेनू पुछना चाहना ना तेरे पिछे कोई चेले तुरदे ने, कपड़े तेरे सीधे साधे ने, बोली जदों तू बोलना ओ भी सीधी बोलना, ते सारा दिन कपड़े रंगण दा काम करना, पर मैनू एक गल दस दे केवल लोकां नू तू नाम दी गल सुनाने, सारा दिन तू माया विच खचते, तेरा अंदर ता रब नाल आप नहीं जुड़िया। अगो नामदेव ने उत्तर बड़ा सोहना दिता, कई वारी बाहर दे जीवन नू ताके भरमो न, जिन्हां ने अभ्यास कीता ओ प्यारे दे चरणां विच अंदरों अंदर जुड़ चुके, पर अभ्यासी पुरुष हर कोई नहीं। हुण अपने सज्जन भी प्रमाण ए दे दिंदे ने, शब्द आरंभ हुंदा नामा माया मोहिया, कबीर साहब दे शलोक ने, नाम देव तैनू ता माया ने ठग लिया, कहे तलोचन मीत काहे छीपो छैलै राम ना लावो चीत, तेरा चित राम विच नहीं जुड़िया, सारा दिन कपड़े रंगण ते रहने। ते अगो ओने उत्तर बड़ा सोहना दिता, कह लगा नहीं होए नामा कहे तरलोचना मुख ते राम संभाल, ओ तरलोचन तू अपने मुख तो जी राम राम जपया कर, हाथ पाओ कर काम सब मैं हथा पैरां नाल कम करना वा, पर कीत नवंजन नाल मेरा जेड़ा चित है ना ओ कभी वाहगुरु तो एक खिन भी दूर नहीं गया। ओने सवाल कर दिता ए किवें हो सकदा है? अपने सज्जन भी ये कह देंदे ने ना कि हाथ पाओ कर काम सब कीत निरंजन नाल, असी ता चलदिया फिरदिया नाम जप लैने आ, पर मैं अर्ज करा प्यारियो एक अवस्था है, कभी तको खां अपने अंदर नू टिकाणा किन्ना कु मुश्किल है। आम तौर ते जदो नाम दी गल चले किन्नी एकाग्रता चाहीदी है, जिदन फौज विच कोई मनुख भर्ती हुंदा है ना ते ओनू गोली चलाण दी जाय दसदे ने, ते जदो ओ गोली चलाण दी जाय सिखदा है ते ओनू एक गल कहिंदे ने कि अपने एक नेत्र नू बंद कर लई, पर जदो तू गोली चलाण लगना है उदो कोशिश करी कि अपने सां नू रोक लई, ते जे ओ कहे भी क्यों शरीर मेरा ता सारा पे है अपने सां नू क्यों रोकां, ओ कहिंदे हो सकदा है कि तेरे थोड़े जे सां लैण दे नाल ए बंदूक जेड़ी तेरी छाती नाल लगी है किते ए हवा दे इक इशारे नाल थोड़ी जी हिल गई, ते निशाना टिकाने ते लगना नहीं। एक फौजी निशाना सिखण लग्या ओनू इन्नी एकाग्रता चाहीदी है। आ माइया सुई विच धागा पांदियां ने, ते चेते रखो हर कोई पांदा जदों धागा पाण लग्या अपने सां नू भी रोक लईदा है कि कई वारी सां दे नाल भी उंगल थोड़ी जी हिल जाए ते उस सुराख दे अंदर धागा पैंदा नहीं। इहदा मतलब इन्नी एकाग्रता इन्हां कम्मां लई चाहीदी है, ते जिहदे बारे साहिब कहिंदे ने कि मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, ओहदे लई किन्नी कु एकाग्रता चाहिए। पहला एकाग्रता नाल टिकना पएगा। एक दिन मैं अर्ज कीती सी पढ़ाई आरंभ विच करिए ते तरीके होर ने, ते जिदन बंदा पुग जांदा ओदन ओहदे पढ़न दा ते कहण दा तरीका कुछ होर हो जांदा। भगत साहिब नूं पुछिया इह किवें हो सकदा है कि बाहरों तू गल्लां भी करें हाथ पाओ कर काब सब कीत निरंजन नाल, जे बाहरों भुल चुक बोलते ती खरे हर भाणे, ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच रामकली राग है, ते जोगियां दा बड़ा प्यारा राग है रामकली। यही कारण सिद्ध गोष्ठ भी रामकली राग विच है। साहिब ने भगत नामदेव ने एक शब्द विच पंज उदाहरणां दित्तियां, कहण लगे ए हो सकदा है संभव है, असंभव नहीं, ए हो सकदा है कि बंदा किरतकार करदे होया भी मालक नाल जुड़िया रहे, ते जिहड़ा बंदा जुड़िया नहीं ओ उदाहरण तो बिना समझदा नहीं, ओ कहिंदा कोई

विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का आगमन गुरु की वडाली विखे होए है। मैं आरंभ तो शुरू करना चाहना वा साहब दे आरंभक जीवन तो। सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी ने अरदास की थी, ओ भी थां साडे कोल अज मौजूद है। जिस जगह ते बाबे बुढ़े ने अरदास की थी, उस स्थान नू आपां बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी दी कहने हैं। ओ बीड़ वाली जड़ी जगह है, ए गुरु घर नू चौधरी लंगा वल्लों भेट की गई से। चबाल दा रहण वाला चौधरी लंगा ओदे वल्लों भेट की गई। बाबा बुढ़ा जी ने उस धरती ते अरदास की, ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दा आगमन जिसनू आपां अज गुरु की वडाली कहने हैं उस जगह ते हुए है। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे आगमन दे संबंध विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इत्थे कृपा करके 6 हरका खूह भी लवाया से। साहिब सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जदों पुत्र दी दात परमेश्वर ने दिती, उदों भी गुरदेव उस मालक दी बाणी उहदे नाम नाल उस प्यारे वाहिगुरु दा शुक्र करदे ने। गुरु हरगोबिंद साहिब दा नाम भी बाबा बुढ़ा जी ने रखिया। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज बाल उम्र विच उन्हां ते 3 खूनी वार उन्हां दे सके ताए वल्लों कीते गए। मैं ये वैसे अर्ज कर भी चुका वा, पहला एक दाई नूं भेजिया कि जहर दे के इस बच्चे नूं तू जहर दे के मार दे, इहदी मौत दे नाल साडे पुत्र मेहरवान नूं गुरु नानक साहिब दी गद्दी मिल जाएगी। दाई दी पेश ना गई, इन्हां ने एक सपेरा भेजिया सप दे के जेकर हरगोबिंद नूं सप डंग मार के खत्म कर दे तेरे घर नूं रुपईयां नाल भर देंगे। पर सिख तवारीख दे मुताबिक गुरु नानक दी कृपा दे नाल उह सप भी गुरु हरगोबिंद साहिब दा कुछ विगाड़ नहीं सकिया। तीजा खूनी वार सके ताए ने कराया कि जिहड़ा खड़ावा गुरु हरगोबिंद साहिब नूं खड़ांदा है ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪਿਰਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਖੂਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਪੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾਵੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ने 3 वारां दा जिक्र कीता ते बंसावली नामे विच केसर सिंह छिबर ने बंसावली नामा 10 पातशाहियां दा उहदे विच इक होर भी जिक्र कीता। कहिंदे ने गुरु हरगोबिंद साहिब खेडदे पए सन। मैं अर्ज कर रहा केवल वह केसर सिंह छिबर इहदा जिक्र करदा, कोई होर नहीं। कहिंदे ने बाबे पिरथीए ने जिहड़े बच्चे इहदे नाल खेडदे ने, एक बच्चे दे मां बाप नूं खरीदिया ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਜੇਬਾਂ ਸਨ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਮਠਿਆਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਏ ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈ। ਪਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨਰੂਪ ਹੈ। 3 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ